आज के प्रसारण में आज है 14 मई 2026 बृहस्पतिवार, ज्येष्ठा कृष्ण पक्ष द्वादशी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर।

सबसे महत्वपूर्ण और उज्जवल पहलू वही है जो सत्य प्रेम भक्ति वाला है, जो नेकी नम्रता विशालता सहनशीलता करुणा दया और मानवता वाला है। इंसान तूने चयन करना है कि प्रेरणा किससे लेनी है, अपने मन को दिशा कौन सी देनी है, तूने मन को विष से भरना है या अमृत से।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफ़र जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

यो छ एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना

प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 14, जो आधारित है नज़्म व गजल संग्रह लम्हा लम्हा सौगात पर, जिसको अपने शब्दों में पिरोया है श्री राजेंद्र पटवारी नाशाद ने। सहयोग किरणी दास, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता वारत्सुपुरी।

0: Atunci mi-a legut, măzurile și măzuri. Mi-a mai mi-a legut. Ascultă, mi-a ascultat să am cor, așa bătau, așa că trecea cu drumul.
1: Rajinder Patwari Nashad ek nazam mein likhte hain, wo bachpan ke din, wo ladakpan ke kisse, masarat se bharpoor jawani ke nagme, jawan dhadkanon ki sulagti wo raatein, wo sargoshiyon mein mohabbat ki baatein, kabhi yaad aaye to sar ko jhukana, aqeedat mein ek qatra aansu bahana, wahi zindagi ka ashasha hai baaki, wo agar na rakha kya hai ab zindagi mein, fakat uljanon ke us tanha safar mein, na dil mein hai arma, na chahat hai koi, na umeed ki koi shama hi roshan, na jao wo nazar mein, na manzil hai koi, magar zindagi ka safar mere yaro, abhi tak hai jari aur jari rahega. Nashad likhte hain, bheed thi chehron ki yun to har taraf, ek bhi chehra na tha insaan ka, ek bhi chehra na tha insaan ka. एक और नज़म में नाशाद लिखते हैं, इसका उन्वान है माँ का आंचल। नमन मेरा उस आंचल को छुपा रखा मुझे जिसने बरसों तक बचपन में लड़कपन में बचा रखा मुझे जिसने दुनिया की हर एक आफत से सर्दी और गर्मी से आंधी से तूफानों से हर वक्त हर लम्हा हर एक आफत से वो आंचल कैसे भूलूं जो आंचल मेरी माँ का था वो आंचल आज होता तो मेरा हर जख्म भर लेता मेरा हर दर्द हर लेता मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरे उस माँ के आंचल को श्रद्धा से है नमन मेरा मेरे उस माँ के आंचल को श्रद्धा से है नमन मेरा मेरे माँ के उस आंचल को माँ होती ही अनमोल है बहुत खूब नाशाद साहब।

नज़म में लिखते हैं जिसका उन्वान है आज की रात। ये नजारे ये फिजाएं आज क्यों दिलकश नहीं, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। आसमां खामोश है, ये चांद तारे हैं खामोश, गुलसितां खामोश है, उनके नजारे हैं खामोश। आज खुशियां पाने के सारे सहारे हैं खामोश, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। माह नौ की चांदनी भी आग बरसती है आज, दहकते शोलों को दिल में और भड़काती है आज। मेरे जज्बों मेरे अरमानों को तड़पाती है आज, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। रात के इस साज में है आज कोई लाई नहीं, दिल को बहलाने की इसमें आज कोई शय नहीं। क्या खबर इस रात की अब है सहर या है नहीं, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। हर तरफ खामोश मंजर हर तरफ वीरानिया, बज रही है चार सू क्यों गम की ही शहनाइयां। डस रही है आज मुझको अपनी ये तन्हाइयां, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। रात डलती जा रही है नींद क्यों आती नहीं, शमह बुझती जा रही है नींद क्यों आती नहीं। सहर सजती जा रही है नींद क्यों आती नहीं, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। किस तरह जाहिर में कर दूं आज अपनी बेबसी, लुट चुका चैनो करार मिट चुकी है हर खुशी। दर्द बनकर रह गई है आज मेरी जिंदगी, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। आज मैं तन्हा यहाँ नाशाद हूँ बर्बाद हूँ, कैद में मुकीद बुलबुल की मैं जो फरियाद हूँ। या किसी आशिक के कोई गमजदा रुवाद हूँ, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। सोचता हूँ गम के आंसू क्यों न मैं बरसाऊं आज, क्यों न मैं दीवार से ही अपना सर टकराऊं आज। या कोई भी जहर खाकर क्यों न मैं मर जाऊं आज, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। राजेंद्र पटवारी एक नज़म में लिखते हैं, सुकरात हो तो जहर का प्याला ही पिला दो, ईसा की तरह मुझको भी सूली पे चढ़ा दो। हक मांगना गर जुर्म है तेरी निगाह में, मुजरम हूं मुझे शोक से जो चाहे सजा दो। लेकिन मेरी आवाज दबाए न दबेगी, पत्थर की है लकीर मिटाई न मिटेगी। चाहो तो अंधेरों को वसी और भी कर लो, खुशबू तो अंधेरों से छुपाए न छुपेगी। आवाज हक मेरी है ये लाएगी इनकलाब, हर जाबिर वो शातिर को ये कर देगी बेनकाब। वो दिन बहुत करीब है जब मेरी ये निदा, हर जुल्म का हर जबर का मांगेगी खुद हिसाब। हर जुल्म का हर जबर का मांगेगी खुद हिसाब।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 14। आज का ये कार्यक्रम आधारित है राजेंद्र पटवारी नाशाद के नजम व गजल संग्रह लम्हा लम्हा सौगात पर। आपको कुछ और नज़में और गजलें सुनाता हूँ। नाशाद साहब एक नज़म लिखते हैं जिसका उन्वान है एतराफ। वो लिखते हैं, मैंने नाशाद रंग व नूर की खातिर में यूं ही अपनी आंखों में बसाए थे हसी ख्वाब कभी, एक महोम तमन्ना का सहारा लेकर छूने निकला था अबस दामन महताब कभी। मैंने सोचा था कि ख्वाबों में हकीकत होगी, वक्त के साथ मेरे ख्वाब भी पूरे होंगे, गुल व गुंचे भी मेरे शौक के खिल जाएंगे, महल हसरत के वो मेहराब भी पूरे होंगे। बंद आंखों को जो खोला तो सयाही में, मगर अपने जज्बात को शोलों में सुलगते देखा, और तसव्वुर ने तराशा था जो एक ताज महल, मेरी आंखों ने वो खंडर में बदलते देखा। दिल को एक ठेस लगी, जख्म लगा, दर्द बढ़ा, मेरी आंखों के हसी ख्वाब सभी टूट गए, देखकर अपनी उमंगों का वो तलख अंजाम, मेरे होंठों से वो नगमात सभी छूट गए। दर्द सीने का बड़ा तब कहीं एहसास हुआ, दिल की वहशत को मसरत में समझ बैठा था, चंद बेकार उम्मीदों पे भरोसा करके अपने ख्वाबों को हकीकत ही समझ बैठा था। अपनी हसरत को, उम्मीदों को, तमन्नाओं को छोड़ आया हूँ कहीं दूर के वीरानों में, गुजरे आयाम की यादों को लिए दिल में, मगर मैं भटकता ही रहा गम के सियाह खानों में। मुझसे अब मेरी उमंगों का सलाह मत पूछो, मेरा हासिल मेरे अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं, अपनी मुहूम तमन्ना पर नदामत है मुझे, मुझको बेकार उम्मीदों से मिला कुछ भी नहीं, मुझको बेकार उम्मीदों से मिला कुछ भी नहीं।

नौशाद साहब एक और नज़म में लिखते हैं जिसका उन्वान है इल्तिजा। मेरी हमनशी तुम मेरी बात मानो, मेरी याद दिल से तुम अपने निकालो। मेरी साफ गोई पर हैरान न होना, मेरी बात से भी परेशान न होना। मैं जो कह रहा हूँ वो है एक हकीकत, नहीं तुमको पाने की है मुझ में हिम्मत। करूँ बेबसी अपनी कैसे मैं जाहिर, मैं मंजिल से भटका हुआ हूँ मुसाफिर। तेरे नाज अब मैं उठा न सकूंगा, मैं ये रस्म उल्फत निभा ना सकूंगा। मैं ये मानता हूँ कि मैं भी हूँ इंसान, मेरे सीने में भी मचलते हैं अरमान। मगर उनकी दुनिया में वक्त ही क्या है, मेरे जज्बाए दिल की कीमत ही क्या है। मेरे अपने अरमान रहे हैं अधूरे, मैं क्या कर सकूं तेरे अरमां पूरे। मुझे जिंदगी से मिला कुछ नहीं है, मेरे पास गम के सिवा कुछ नहीं है। मुझे पाके तुमको भला क्या मिलेगा, फकत तेरा मासूम दिल ही जलेगा। मुझे है खबर गम उठा ना सकोगी, मेरे रास्तों पर तुम आ ना सकोगी। मेरा रास्ता ही तो सबसे जुदा है, तुम्हें क्या खबर मेरी राहों में क्या है। मेरे रास्तों पर तो वीरानियां है, फकत तीरगी और तन्हाइयां है। मेरे हमसफर मेरी नाकामियां है, मेरे हमनवाह बस परेशानियां है। तेरा मेरी राहों पे चलना है मुश्किल, मेरे गम के सांचे में डलना है मुश्किल। तुम्हें मुझसे उल्फत ये माना सही है, मगर मेरी दुनिया ही उजड़ी हुई है। मैं खुद जिंदगानी से तंग आ चुका हूँ, मैं खुद इस जवानी से तंग आ चुका हूँ। मुझे नाज है इस मोहब्बत पे तेरी, मुझे नाज है इस अकीदत पे तेरी। मोहब्बत की तेरी कदर कर रहा हूँ, मगर साथ ही मैं बहुत डर रहा हूँ। कहीं हुस्न तेरा तबाह ना हो जाए, कहीं तेरी सुर्खी सयाह ना हो जाए, कहीं तेरी सुर्खी सयाह ना हो जाए।

नज्म व गजल संग्रह लम्हा लम्हा सौगात पर। लेखक श्री राजेंद्र पटवारी नाशाद, सहयोग किरणी दास, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सुपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

रेडियो वितस्ता 90.0 MHz से मैं बोल रही हूँ, आपकी रेडियो दोस्त कविता अग्रवाल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रेरक कहानी जिसका शीर्षक है निरंतर अभ्यास। बहुत पुरानी बात है, एक वृद्ध किसान अपने पोते के साथ खेतों में रहता था। उन खेत खलियानों के चारों ओर सुंदर पहाड़ियां थी और थोड़ी ही नीचे एक नदी बहती थी। वह किसान सुबह उठकर अपने दैनिक क्रियाओं के साथ साथ भगवत गीता का पाठ किया करता, जो उसे कंठस्थ था, और साथ में काफी मंत्रों का उच्चारण किया करता था। किसान का

0: पोता प्रतिदिन अपने दादाजी को सुनता और वही सब करने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह भी भगवत गीता के श्लोक बोलने लगा, परंतु उसे कुछ समझ न आता, वह केवल उन सब को बोल लेता था। एक दिन उसने अपने भोले स्वभाव में अपने दादाजी से कहा, दादाजी मैं यह सब मंत्र तो आपको सुनकर बोल लेता हूँ, परंतु मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, तो फिर मेरा ऐसा करने का क्या लाभ है। दादाजी ने उस समय उसे एक टोकरी दी जिसमें से वो अंगीठी में कोयले डाल रहे थे। वह बोले, यह टोकरी लेकर जाओ और नीचे नदी से इसमें पानी भर लाओ। बच्चा गया और पानी ले आया, पर ये क्या, उसने देखा ऊपर आते आते सारा पानी टोकरी की दरारों में से रिस गया और टोकरी बिल्कुल खाली है। दादाजी ये देखकर हंसे और बोले, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, थोड़ा तेज चलना होगा। बच्चा फिर गया और इस बार तेजी से आया, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। वह कहने लगा, टोकरी में पानी लाना संभव नहीं है, मैं बाल्टी में ले आता हूँ। तो किसान ने कहा, नहीं मुझे तो टोकरी में ही चाहिए, तुम कोशिश करो अपनी स्पीड बढ़ाओ तो शायद यह हो पाएगा। इस बार उसने स्पीड अपनी और बढ़ाई और हाफते हाफते पानी भरकर लाया, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। उसने अपने दादाजी को विश्वास दिलाने के लिए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप देखना इस बार मैं कितनी तेज गति से काम करूंगा, फिर भी पानी नहीं आएगा। वह यह कहकर नदी की तरफ दौड़ा और दादाजी को दिखाते हुए टोकरी को नदी में डुबोया और बाहर निकालकर पूरी तेजी से ऊपर आने लगा, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। अब दादाजी बोले, दादाजी मुस्कुराए और बोले, टोकरी की तरफ देखो। बच्चे ने जैसे ही टोकरी की तरफ देखा तो उसे टोकरी कुछ अलग दिखी। पहले वह कोयला रखने के कारण अंदर और बाहर से काली और गंदी हो गई थी, पर अब अंदर और बाहर से एकदम साफ और सुंदर लग रही थी। दादाजी ने समझाया, यही होता है भगवत गीता पढ़ने से या मंत्र उच्चारण करने से, भले ही हमें समझ न आए, पर वह हमें अंदर और बाहर से यानी हमारे तन और मन को एकदम साफ कर देती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जब ये सफाई चल रही होती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस कदर अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। जैसे बिना एहसास के यह टोकरी एकदम साफ हो गई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ना केवल नाम जप, ना केवल मंत्र उच्चारण, अपितु कोई भी काम अगर हम नित्य रूप से करें तो उसका गहरा प्रभाव हमारे तन मन और चित्त पर अवश्य पड़ता है। और ये नियम अच्छी और बुरी बातों दोनों के लिए समान है, क्योंकि हमारा अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सही गलत या अच्छे बुरे में भेद नहीं करता। इसलिए यह निर्णय हमारा है कि हमें क्या सीखना है। धन्यवाद। ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर अवश्य बताएं। मैं आपके लिए और इसी तरीके की कहानियां लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। आप सोचते होंगे कि फिर एक नई लघु कथा लेकर आए हैं, फिर आंखों में आंसू भर देंगे। बात ऐसी नहीं है, हम हर बार आपको हृदय स्पर्शी मार्मिक कथाएं सुनाकर आपकी आंखें नम ही नहीं करते, कई बार हमारी कहानी आपको गुदगुदाती भी हैं। बस शर्त इतनी सी है कि आप इनको ध्यान से सुनिए तो सही। तो लीजिए आज एक अलग तरह की लघु कथा आपको सुनाता हूं, निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। और ये मुस्कान आपके चेहरे पर जो आ रही है ना, इस लघु कथा के रचयिता हैं शंचराम। तो शंचराम सरन जी की ये रचना आप सुनिए, नहीं महसूस कीजिए। एक आदमी अपने दफ्तर से थका हारा पूरा दिन काम करके घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। घना अंधेरा, खूब मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था आसपास में। उसकी तो हालत बिल्कुल खराब, ना कोई आगे ना कोई पीछे, दूर तक एकदम सन्नाटा और खामोशी। अब उसने कोई उपाय नहीं देखा, मजबूर होकर अपनी गाड़ी को एक साइड में लगा दिया और लिफ्ट के लिए किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। डर भी लग रहा था। काफी देर इंतजार के बाद उसने देखा कि एक गाड़ी बहुत धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। उसे आते देख उसकी जान में जान आई, वो मन ही मन खुश हुआ। उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया, लेकिन कुछ सुगबुगाहट नहीं हुई। गाड़ी धीरे धीरे रुककर उसके पास रुक गई। उसने गेट खोला और झट से उसमें बैठ गया, लेकिन अंदर बैठने के बाद तो उसके होश ही उड़ गए। गला सूखने लगा, आंखें खुली की खुली रह गई, छाती धक धक धक धक धड़कने लगी। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर तो कोई है ही नहीं, फिर भी गाड़ी अपने आप चली जा रही है। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से ये खौफनाक मंजर। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बाहर निकलूं या अंदर ही बैठा रहूं। वो कोई फैसला कर पाता तो वही अचानक सामने से ना एक मोड़ आया, फिर झट से दो हाथ आए और गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी मुड़ गई और फिर अचानक से दोनों हाथ गायब। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो गई। भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल और किसी खतरनाक डायन के भय से ना उसने झट से मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अंदर चुपचाप छिप कर रहने में ही अपनी भलाई समझी। धीरे धीरे रुक रुक कर गाड़ी आगे बढ़ रही थी, बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। तभी उसे सामने एक पेट्रोल पंप नजर आया। गाड़ी वहां जाकर रुक गई। उस आदमी ने राहत की सांस ली और तुरंत गाड़ी से उतर गया। वहीं पर पानी पिया और एक लंबी सांस ली। इतने में उसने देखा एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा है। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा, उससे कहा, रुको रुको रुको, इस गाड़ी में बिल्कुल मत बैठो। अरे मैं इसमें बैठ कर आया हूं, इसमें बहुत खतरनाक भूत प्रेत है जो दिखता नहीं है लेकिन गाड़ी अपने आप चलती है। उस आदमी ने उसके गाल पर एक झन्नाटेदार झापड़ मारा और कहा, बे साले तू बैठा कब इसमें? तभी मैं सोचूं साला गाड़ी इतनी भारी कैसे हो गई, ये मेरी गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया था, रास्ते से धक्का लगाते आ रहा हूं 5 किलोमीटर से और तू इसके बीच में बैठा हुआ। कैसी लगी है आपको ये रचना? हमें हमारे टेलीफोन नंबर 7056413010 पर जरूर बताइएगा। और अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए अगली कहानी तक के लिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: तुझ बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

मैं हूं रमेश मराठा। मेरे पास से गुजरकर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए।

कहीं आकाश से घूमते घूमते जब ये आवारा बादल टूट जाते हैं तो हम यहां भीग जाते हैं। खुशनुमा माहौल चारों ओर नजर आने लगता है। जन्नत जैसा एहसास हम महसूस करते हैं और सिखा जाती हैं ये मासूम हवाएं जीने का

ये चाहती कभी बुरी नहीं होती हैं। नई नवेली दुल्हन की तरह हमेशा जवान और पुरकशिश रहने का दावा करती हैं। तभी तो हर अंजमन में तेरा जिक्र होता है खामोशी से। चुपचाप उतर जाती हो आंखों में आंसू की तरह।

जो तेरे सिर से सरकता रहा, नीले रंग का दुपट्टा हम हर पल संभालते रहे, जो तेरे बदन की खुशबू महफिल को मोतर कर गई, हम तेरे आंचल में छिप गए, तुम्हारे बदन से सिमटने की कोशिश भी की, शायद पास आते साथ रहते, मगर यह हो न सका, ख्वाब बनते गए और अक्सर बिखरते गए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पेश है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 10। पेश करेंगे आरजे किरणी।
2: सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नया अंक पहलू और गीत का लेकर आई हूँ। चलते चलते कुछ सपने भी साथ ले चलो, हर कदम पर खुद से ही कर दो एक नया वादा।

दोस्ती एक मीठा शहर है, दोस्ती एक मीठा सफर है, दिल से दिल मिलते हैं हर कदम पर और एक दूसरे का साथ निभाते हैं।

बड़ी दूर से आए हैं कहानी लेकर साथ, दिल की बातों का सिलसिला है ये अनजाने रस्ते का राज़।

साथी रे जिंदगी की राहों में चलते रहो, खुशियों में गम में हमेशा साथ निभाते रहो, हर कदम पर साथ चलते रहो।

रोशन चेहरे में खिलती है मुस्कुराहट के फूल, दिल में छुपी है खुशी और आंखों में चमक का राज।

इसके साथ ही आज के पहलू और गीत का अंक यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, और अपना फीडबैक 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर देते रहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 10, पेश किया आरजे किरने ने, रिकॉर्ड एडिट किया दीपक कश्यप ने, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान हैं श्री सुरेंद्र कुमार। कार्यक्रम पेश करेंगे भारत सुपोरी।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आज मैं आपके लिए लाया हूं कार्यक्रम इनसे मिलिए का एपिसोड 9। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। समय एक अनमोल संसाधन है जिससे हमें सत्यापित करना चाहिए। वक्त का नुकसान ना करने वाले लोग सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। समय का महत्व शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत विकास के सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। हमारे जीवन में घड़ी का बहुत प्रमुख स्थान है जिससे हम समय समय पर सही वक्त का पता लगाते हैं। चाहे हम विश्व के किसी भी देश में हो, समय वही 24 घंटे सबके लिए है। मैं आज समय और घड़ी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम में अंबाला की एक ऐसी हस्ती है जो हमारे लिए घड़ी बनाते हैं। पर घड़ी तो सब बनाते हैं, पर इनमें कुछ खास है, ये व्यक्तित्व कुछ अलग है। करते हैं स्वागत आज के मेहमान का जिनसे आपको चौंकाने वाली जानकारी भी मिल जाएगी। स्वागत, अभिनंदन सुरेंद्र कुमार जी आज के इस कार्यक्रम इनसे मिलिए में।
4: भारत जी, मैं आपका और आपके सभी श्रोतागण का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां पे आने का मौका दिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। कृपया आप हमारे श्रोताओं को अपना संक्षेप में परिचय दें ताकि आपको वो और अच्छे से जान सके।
4: मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं अंबाला सिटी में पटेल रोड पर जनता वॉच कंपनी के नाम से घड़ी की दुकान करता हूँ और ये काम मैंने अपने फादर श्री हरबंस लाल जी से सीखा, क्योंकि घर पे बड़ा होने की वजह से मेरे को उनके साथ दुकान पे जाने का मौका मिलता था, क्योंकि उनके कोई और ब्रदर या सिस्टर नहीं थे। अकेले होने की वजह से वो मेरे को कहीं बाहर जाना होता था तो मेरे को दुकान पे बिठा जाते थे, तो जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट घड़ी की तरफ बढ़ता चला गया। उसके बाद मैंने उनसे काम सीखा और उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इसमें कुछ और अच्छा कर पाऊँ, मतलब हर टाइप की घड़ी की तरफ अपना ध्यान दिया, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे ऑटोमेटिक हो, चाहे क्वार्ट्ज हो, हर लाइन में मेरा एक अलग तजुर्बा रहा।
3: सुरेंद्र जी, आपने घड़ी की बात की तो जो घड़ी की टिक टिक होती है वो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है?
4: टिक टिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आदमी के टिक टिक खत्म हो जाती है तो समझ लीजिए आप आदमी आज एक पल में ऊपर चला जाता है।
3: यानी कि आप घड़ी की टिक टिक को हमारे जो दिल की
4: टिक टिक
3: धड़कन है
4: उससे कंपैरिजन करते हैं।
3: आपको आज यहाँ बुला के और आपसे जो हम वार्ता करेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को वो पसंद आएगी और हम कोशिश करेंगे लोगों को अपनी उस जिंदगी की टिक टिक से, घड़ी की टिक टिक से लेके जिंदगी की आगे की ओर हम बातचीत करें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में जब जाना तो पता चला कि आप सेल्फ मेड घड़ी साज हैं, कृपया विस्तार से बताएं।
4: सेल्फ मेड का मतलब है खुद से किसी, खुद को किसी काम के लिए तैयार करना। ऐसे ही मैंने किसी कंपनी से या किसी संस्था से इसका बारे में कोई डिप्लोमा वगैरह मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, सिर्फ अपने पापा को देख देख कर और खुद उस पर मेहनत करके मैंने इस काम को सीखा और आज वर्ल्ड की कोई भी घड़ी कैसी भी हो मैं उसको प्रिपेयर कर सकता हूँ।
3: यानी कि आपकी जो महारत है घड़ी की, जो मशीनरी है, घड़ी वैसे एक छोटा सा उपकरण है, तो आपकी दिलचस्पी कैसे बनी कि उनकी छोटी छोटी जो पुर्जे हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप में देखने पड़ते हैं, तो उस तरीके से आपकी दिलचस्पी कैसे बनी?
4: जैसे जैसे काम करता है आदमी तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उस काम में बढ़ता चला जाता है
3: जी।
4: नए चैलेंजेस आते हैं नई कंपनी की, जैसे हम कुछ देखते हैं एक कंपनी की गाड़ी है तो कल को दूसरी आ गई तो उसमें कुछ डिफरेंट है, तो आदमी सोचता है यार इसमें अलग क्या है, तो वो जो देखने की और समझने की प्रक्रिया है वही आदमी को आगे ले जाती है। अगर हम उसी स्टेप पे रुक जाते हैं भी हमने आगे और नहीं जाना तो लाइफ हमारी रुक जाएगी
3: जी।
4: तो नया सोचने के लिए नया समझने के लिए आपको नई तरफ भागना पड़ेगा
3: जी। यानी कि कोई भी काम हो उसको निरंतर उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अलग अलग गाड़ियां हैं चाहे वो हमारे देश की बनी हुई है या बाहर की आई है, बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही होगा या सबका अलग अलग होता है?
4: अब बेसिक तो मेनली एक रहता है, लेकिन उसमें क्या है कि वर्किंग उसके फंक्शंस में डिफरेंस आ जाता है
3: जी।
4: जैसे कुछ में अगर डेट है डे नहीं है, किसी में डे और डेट इकट्ठे हैं, किसी में डे ऊपर है डेट नीचे है, मतलब डे डेट तो इक्वल हैं लेकिन उनको ये है कि प्रेजेंटेशन उनकी अलग अलग हो जाती है।
3: यानी कि उनकी जो मशीनरी है वो अलग अलग तरीके से काम करती है, किसी में डेट और तारीख एक साथ ही बदल जाती है, किसी में अलग अलग बदल जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया क्या आप सुनाना चाहेंगे हमारी श्रोताओं को जिसने आपकी जिंदगी में बदलाव लाया हो?
4: बिल्कुल, मेरी जिंदगी में बदलाव का जो मेन कारण था वो क्या था कि मेरी सिस्टर इन ला की मैरिज थी June 1997 में
3: जी।
4: तो मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ से अम्बाला कैंट से सुपरफास्ट सुबह जाती है उस ट्रेन में मेरठ जाने के लिए सवार हुआ
3: जी।
4: तो रश बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मेरे को सामान रास्ते में ही रखना पड़ा। आगे जब जगाधरी के पास थोड़ी बर्थ खाली हुई तो मैंने सामान वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरठ जाके जब मैंने अपना सामान देखा तो उसमें से मेरा जो ज्वेलरी का पर्स था वो गायब हो चुका था।
3: अच्छा।
4: जिसकी वजह से अत्यधिक टेंशन और सोचने की वजह से उसका इफेक्ट सारा मेरी आंख पर पड़ गया, राइट आईज पर
3: जी।
4: और मेरी राइट आई पे पर्दे में होल हो गया।
3: ओहो।
4: तो जब मैंने पीजीआई में चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि ये आपकी बारीक नजर के बिल्कुल नजदीक में है इसलिए इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसको आप ऐसे ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा
3: जी।
4: तो फिर उसके बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे को मतलब ऐसी चीजें क्यों दी जो पल भर में जिनका कुछ भी साथ ना हो, एक मिनट में सारी उम्र की कमाई जो मेरी थी वो एक सेकंड में चली गई। तो मेरे साथ कुछ ऐसा प्रभु दो कि जो मेरे से कोई भी ले ना सके, छीन ना सके
3: जी।
4: तो इसी विचारों के साथ एक दिन मैं दुकान पे काम कर रहा था तो मेरे पास एक बुजुर्ग आए जिन्होंने उर्दू में कुछ लिखना शुरू किया। तो मैंने उनकी तरफ ध्यान दिया तो मेरे को लगा कि ये कुछ अलग से काम कर रहे हैं,
3: यानी कि जैसे हम हिंदी और अंग्रेजी लिखते हैं उसमें वो हम दाई से लिखना शुरू करते हैं।
4: हाँ जी,
3: और उर्दू तो दाई से शुरू होता है।
4: दाई से शुरू होता है
3: जी।
4: तो उस चीज को देख के मेरे पे विचार आया कि हम अगर हम उल्टा लिख सकते हैं तो उल्टा देख भी सकते हैं, तो उस पे मैंने अपना काम शुरू किया।
3: सुरेंद्र जी, जो आपकी सोचने की जो क्षमता है उसको देखते हुए हम इसमें विस्तार से बात करेंगे, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा जब आप कभी अच्छे मूड में हो क्या आप संगीत सुनते हैं?
4: बिल्कुल सर, संगीत तो जीवन की लाइफ लाइन है
3: जी।
4: किसी भी जीवन को चलाने के लिए संगीत का एक अलग सी स्थान है, उसके बिना जिंदगी अधूरी है। टिक टिक टिक टिक टिक।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। हमारे साथ आज हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो एक खासियत से जाने जाते हैं, उसी के बारे में इनसे ही पूछते हैं। सुरेंद्र जी, एक आम गड्डी साज और आप में क्या अंतर है, जिस वजह से हमें भी आपको यहाँ आमंत्रण देना पड़ा ताकि हम ये बात अंबाला के सभी लोगों तक पहुँचा सके।
1: भारत जी, आपने जो क्वेश्चन मेरे से किया बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेरे पास मेरी शॉप पे एक आदमी आया और उसने मेरे सामने उर्दू में कुछ लिखा, तो मैं एकदम फर्स्ट टाइम उस उर्दू को लिखते हुए देखा था, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी तो हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन उर्दू जो है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी गई मेरे सामने। तो मेरे को लगा कि मैं जो घड़ी है कुछ उसको भी ऐसे मॉडिफाई करूँ कि वो क्लॉक वाइज की जगह एंटी क्लॉक वाइज टाइम दिखाना शुरू करे।
0: तो ये तो एक बहुत बड़ा आपके दिमाग में ख्याल आया कि नॉर्मली आज तक हमने देखी है घड़ियां जो है वो क्लॉक वाइज चलती है, यानी कि वो दाएं की तरफ चलती है। तो क्या आपके मन में ये ख्याल आया कि जब उर्दू उल्टी लिखी जाती है तो घड़ी भी इस तरीके से मैं बना दूं कि वो उल्टी ही चले,
1: देखा जाए? बिल्कुल।
0: तो फिर आगे क्या रहा?
1: तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया और बहुत जल्दी पहले मैंने उसमें क्वार्ट्स में बनाई, उसके बाद मैकेनिकल पे ट्राई किया, जो वर्ड में फर्स्ट टाइम थी, जिसमें हम चाबी सीधी भरते थे लेकिन टाइम वो उल्टा दिखाती थी। उसके बाद फिर मैंने उसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया और उसके बाद जैसे जैसे मेरे पास लोगों की डिमांड आती गई तो उसको हर अलग अलग लैंग्वेज, जैसे कोई मलयालम में मांगता मेरे से, कोई उड़िया में मांगता, और ऐसे बाहर से भी कुछ लोगों ने जैसे रोमन में या उर्दू में, अरेबी में डिमांड आनी शुरू हुई, तो उसके ऊपर मैंने फिर काम किया और हर लैंग्वेज में मैंने उसको डेवलप किया।
0: मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके मन में ये ख्याल आया, जब एक घड़ी हम खरीदते हैं तो उसकी जो मशीनरी है वो एक मशीन में बनती है, अब क्योंकि वो क्लॉक वाइज होती है, जब आपने एंटी क्लॉक वाइज उसको सोचा तो क्या आपने उसी मशीनरी को यूज किया या आपने कुछ नए पार्ट्स बनाए जिस वजह से वो एंटी क्लॉक वाइज चलनी शुरू होगी?
1: मतलब उसमें क्या है कि हर मशीन का अपना अपना सिस्टम है
0: जी।
1: कुछ मशीनें तो ऐसी थी जिसको उसी मशीन में ही मैंने मॉडिफाई करके उसको उल्टा चला दिया
0: जी।
1: और कुछ मशीन ऐसी थी जिसमें मेरे को एक आधा पार्ट्स अलग से दूसरी घड़ी का उसमें ऐड करना पड़ा
0: जी,
1: जिसके रिजल्ट में मतलब उल्टी एंटी क्लॉकवाइज टाइम शो हो।
0: अंबाला के सभी श्रोताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अंबाला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप जानते नहीं है। रेडियो विदस्ता की कोशिश है कि हम उन लोगों को यहाँ आमंत्रण दें और उनसे बात करके आपको अंबाला के लिए गौरवान्वित महसूस कराएं। हमारे साथ जो सुरेंद्र जी आज हैं, आप ये मान के चलिए कि एक ख्याल इनके मन में आया और उन्होंने उस ख्याल को साकार कर दिया। आमतौर पर हमने हमेशा, चाहे हमारी हाथ की घड़ी है या क्लॉक है, कोई भी है, वो क्लॉक वाइज चलती है, यानी कि वो दाएं की तरफ चल के अपना चक्कर पूरा करती है। पर इनके मन में ख्याल आया कि हम घड़ी बनाएंगे जो उल्टी चलेगी, समय वो वही दिखाएगी पर वो एंटी क्लॉक वाइज चलेगी। तो ये हमारे लिए और हमारे अंबाला के लिए एक गौरव का पल है। इसके लिए सुरेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने ये एंटी क्लॉक वाइज घड़ी सोची और बनाई, सबसे पहले आपने इस बात को किसके साथ शेयर किया?
1: भारत जी, सबसे पहले मैंने ये ट्रेड पोस्ट घड़ी मैगजीन आती है
0: जी,
1: उनको लिखा इस बारे में
0: जी,
1: क्योंकि उसमें क्या कि पूरे इंडिया की घड़ी की जो भी कंपनीज या जो भी मॉडल्स बनते हैं उसमें डिटेल वाइज वो आते हैं
0: जी।
1: तो उन्होंने मेरी इस जो इन्वेंशन को अपने उसमें स्थान दिया और पूरे का पूरा एक पेज मेरे ऊपर उन लोगों ने प्रेजेंटेशन दी मेरे को।
0: क्या उसके साथ साथ आपने इस को पेटेंट भी कराया कि ये आपके नाम रहे, कि जो एंटी क्लॉक वाइज घड़ी इससे पहले भी किसी ने बनाई थी या आपने ही पहले बनाई?
1: इससे पहले किसी ने नहीं बनाई थी, लेकिन उस टाइम मेरे को पेटेंट की नॉलेज नहीं थी
0: जी,
1: जिसकी वजह से मैं पेटेंट नहीं करवा पाया
0: जी।
1: लेकिन उसके बाद मैंने इसका एक नाम रखा एंटी।
0: ओके।
1: तो उसको मैंने रजिस्टर्ड करवाया अपने नाम से
0: जी,
1: और उसी के नाम पे मैं उसको आज का अभी तक बेच रहा हूँ।
0: ये एंटी का थोड़ा विस्तार में बताएं, क्या आपका कहने का मतलब है?
1: एंटी जो है मैंने अपनी वाइफ के नाम पे रखा है, मेरी वाइफ का नाम है अंजलि
0: जी,
1: तो अंजलि टाइम इंडस्ट्रीज के फर्स्ट वर्ड लिया हमने लिए
0: जी,
1: और उसके फर्स्ट वर्ड ANTI और एंटी मतलब एंटी क्लॉक भी था
0: जी,
1: तो दोनों मतलब नाम सूट करते थे, जिसकी वजह से हमें ये नाम अच्छा लगा और हमने अपना ब्रांड नेम एंटी रखा।
0: साथ में काम के अलग मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ माना जाता है। आपने अपनी धर्मपत्नी का नाम लिया, तो उनका साथ, उनका सपोर्ट आपकी जिंदगी में कितना है?
1: देखिए, वाइफ जो है अर्धांगिनी गिनी जाती है, मतलब आपका अधांग।
0: जी,
1: तो ये मान के चलिए कि हर कोई भी व्यक्ति है बिना किसी सपोर्ट के या अपनी बिना वाइफ की सपोर्ट के सफल होना बहुत मुश्किल होता है।
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उसका साथ, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकल हो, कैसा भी हो, जरूरी होता है। और वही आपको आगे इंस्पिरेशन देता है काम करने की, क्योंकि अगर वो घर सही से संभालेगी तो आप अपने काम पे मन लगा पाओगे।
0: जी,
1: अगर पीछे से टेंशन होगी तो आप अब मन काम में नहीं लगेगा आपका।
0: जी, जी।
1: तो इसलिए उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, और इसलिए मैंने जो है उनके नाम को प्रेफर किया।
0: इस मंच से जो आज तक आप उनको नहीं कह पाए, क्या कहना चाहेंगे अपनी धर्मपत्नी को?
1: मैं एक छोटा सा गाना डेडिकेट करता हूँ उनको, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था।
0: आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुरेंद्र जी की ये भेंट जो उन्होंने डेडिकेट की है अपनी धर्मपत्नी को।

0: सुरेंद्र जी, आपकी ये उपलब्धि एंटी क्लॉक वाइज यानी उल्टी चलने वाली घड़ी को क्या मान्यता मिली? क्या आपको इसके लिए सम्मानित भी किया गया?
1: इसके लिए भारत जी मेरे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला
0: जी। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जब हम कोई भी काम ऐसा करते हैं तो और हम किस तरीके से इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुँचाते हैं?
1: इसमें क्या होता है कि हमें एक प्रशासन का प्रशस्ति पत्र और एक फर्स्ट रैंक ऑफिसर का प्रशस्ति पत्र लेकर और उनको अप्लाई करना पड़ता है
0: जी।
1: तो जिसके लिए मैंने डीसी अंबाला जो उस टाइम थे उनसे और प्रिंसिपल ऑफ डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल उनसे मैंने प्रशस्ति पत्र लिए और उनके बिहाफ पे मैंने आगे अप्लाई किया।
0: क्या वो आके उन्होंने अपने काम को देखा और उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज किया?
1: नहीं, जो पेपर मैंने अपलोड किए थे, जो डॉक्यूमेंट्स, उनके बेस पे ही उन्होंने मेरे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का स्थान दिया।
0: सर्टिफिकेट है वो मिला। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक अलग पहचान बनाने वाली घड़ी साज ने क्या कुछ और भी किया है जो शायद किसी ने आज तक ना किया हो?
1: बिल्कुल भारत जी, जैसे जैसे लाइन में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और आप अपना 100% देते हो तो प्रभु भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नया करने की रास्ता देता है
0: जी।
1: मैंने अभी जैसे पहले बताया कि मेरी एक आंख खराब हो गई थी तो मैंने कोशिश की थी कि मैं बिना आंखों के घड़ी रिपेयर करने की ट्राई करूं। तो मैंने आंखों पे पट्टी बांध के कुछ प्रैक्टिस की जिसमें मेरे को कामयाबी भी मिली
0: जी।
1: और मैंने कुछ समाचार पत्र वालों के आगे अपना ये जो काम था प्रेजेंट किया और जिसमें मैंने 2 मिनट से भी कम समय में पूरी घड़ी खोल के वॉल क्लॉक की मशीन को और दोबारा रीअसेंबल करके और रनिंग कंडीशन में उनको दिखाया तो उन्होंने भी मेरे को अपने न्यूज़पेपर में स्थान दिया।
0: जो आपकी ये काबिलियत है इसको आप किस तरीके से आंकते हैं?
1: काबिलियत तो देखिए सर, अपने आपके 100% रिजल्ट जो मिलेंगे आपके अपनी मेहनत से ही मिलेंगे
0: जी।
1: और अगर उसके साथ अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो जाए तो उस आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। लेकिन हम लोगों की सिर्फ सबसे बड़ी कमी यही है कि हिंदुस्तान में सब कुछ होते हुए भी सिर्फ सिस्टम की कमी है। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेक इन इंडिया की तरफ ध्यान दे, और अगर कोई आदमी कुछ नया लेके या कुछ नया करके दिखाता है तो उनको चाहिए कि उसकी सपोर्ट करे,
0: उसको प्रोत्साहन
1: और प्रोत्साहन किया जाए और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसके उसका बेनिफिट दिया जाए ताकि वो और अच्छे एफर्ट्स कर सके।
0: सुरेंद्र जी, अब समय है एक और गीत सुनाने का, तो मैं चाहूंगा कि जो आपका कोई मनपसंद गीत हो आप वो बताएं, वो हम आपको और हमारे श्रोताओं को भी सुनाएंगे और आपके साथ जो बातचीत है वो हम जारी रखेंगे।
1: मैं एक छोटा सा गीत आपको रिक्वेस्ट करता हूं सुनाने के लिए
0: जी।
1: कि एक ताजमहल दिल में हर कोई है बसाए
0: जी,
1: कोई तो बना पाए कोई ना बना पाए।
0: आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुरेंद्र जी का ये मनपसंद गीत और आप बने रहिए हमारे साथ और हम ये बातचीत इसके बाद सुरेंद्र जी के साथ जारी रखेंगे।

0: मुझे उम्मीद है कि आपको सुरेंद्र जी का ये मनपसंद गीत पसंद आया होगा। आप हैं हमारे साथ FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर, और हमारे साथ है सुरेंद्र जी जो अंबाला सिटी से है। ये प्रोग्राम का आखिरी भाग है, पूछते हैं आज के आमंत्रित मेहमान से। सुरेंद्र जी, आप ये बताएं कि आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है?
1: जीवन में सर मेन लक्ष्य जो होता है, नेचर को साथ लेकर चलना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक नेचर ही है जो हमें हर तरह का रास्ता दिखाती है
0: जी।
1: तो मेरे मन में जो अभी लक्ष्य मैंने आज निर्धारित किया वो क्या है कि रेनबो को देखने के बाद मेरे को लगा कि जैसे रेनबो पूरी कहीं से भी हम देखें, किसी भी सिटी से, किसी भी कंट्री से, तो आपको एक जैसा दिखेगा
0: जी।
1: तो उसी कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने अपनी घड़ी में उतारा, और उसमें मैंने जैसे हमें हर देश से एक ही रेनबो दिखता है, तो ऐसे ही मैंने अपनी घड़ी में एक ही डायल से अलग अलग कंट्रीज का टाइम रिप्रेजेंट किया। तो मेरी जो घड़ी मैंने नई डेवलप की है उसमें वर्ल्ड क्लॉक, उसमें आप 50 से ऊपर देशों का टाइम एक ही वर्ल्ड क्लॉक में देख सकते हो।
0: यानी कि आपने उस घड़ी का डायल पैड, जैसे रेनबो के 7 रंग है, उस हिसाब से आपने देशों के हिसाब से, रंगों के हिसाब से बना दिया डायल पैड, जिससे हम अलग अलग देशों का समय देख सकते हैं। तो उसमें सुइयां कितनी है?
1: 2 सुइयां हैं सर,
0: जैसे हर घड़ी में होती
1: है। जैसे हर घड़ी में होती है 2 सुइयां,
0: यानी कि उस रंग को देख के हम उस देश का समय देख सकते हैं।
1: देख सकते हैं सर,
0: ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं सुरेंद्र जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ये कार्यक्रम लोग सुनेंगे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आना चाहे और आपसे ये घड़ी लेना चाहे, तो उसको कहाँ आना पड़ेगा?
1: उसके लिए सर अंबाला सिटी में पटेल रोड पे जनता आवाज कंपनी के नाम से मेरी शॉप है
0: जी,
1: जहाँ पे मैं सुबह 9 से लेकर 8 बजे तक शाम के अवेलेबल रहता हूँ।
0: यानी कि वो वहाँ पे आ जाएं और आपसे इस नायाब जो तोहफा है उसको आपसे खरीद सकते हैं। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि उनमें पेशेंस की बहुत कमी है
0: जी,
1: क्योंकि जिंदगी में अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मिनट में काम हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है
0: जी। यानी मेहनत के बगैर आज के समय में हम तरक्की नहीं कर सकते। तो आज के युवा, उनको आप ये कहना चाहते हैं कि समय के साथ साथ वो मेहनत भी करें, और डेडिकेशन के साथ अगर वो कुछ करना चाहें तो वो अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो आपका इस घड़ी के माध्यम से उनको क्या संदेश है?
1: समय की वैल्यू को पहचाने
0: जी,
1: और जो समय उनके हाथ में है उनका सही यूटिलाइज करें
0: जी,
1: क्योंकि क्या होता है कि हम लोग समय रहते चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते, और जब समय निकल जाता है तो जब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। तो दोनों, समय का और अपनी जो इच्छा शक्ति है या जिस तरफ उनका इंटरेस्ट है, उन चीजों को मिलाकर अगर वो मेहनत करते हैं तो कामयाबी उनसे दूर नहीं हो सकती।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका, आप हमारे पास स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला, और हमें बहुत खुशी है कि हमें आप जैसे महानुभावों से मुलाकात होती है, और कोशिश करते हैं कि अंबाला के लोग आपकी ये वार्ता सुन के वो भी गर्व का अनुभव महसूस करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, धन्यवाद। आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान थे श्री सुरेंद्र कुमार। कार्यक्रम को रिकॉर्ड प्रस्तुत व निर्देशन दिया भारत सुपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz की प्रस्तुति।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया था हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: You are listening FM 90.0 megahertz radio vitasta hum safar zindagi ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक। इन मौसमों के गुम हो जाने तक कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पुर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद मैं अपनी बात कह पाता।

देखते ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीन दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा।

फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया न करो, आंखें सच बोलती हैं प्यार छिपाया न करो।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आपदा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: कुमार। अरे संभव गाड़ी को भी यहीं पंक्चर होना था। हम पहुँचे तो सारी आफत चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
1: वाह, अरे वाह, अरे वाह।

अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह वाह वाह वाह। ये रुक जाते तो सारे धंधे रुक जाते, घर से दफ्तर तक

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 15, सेज SAGE और वरिष्ठ नागरिक पेंशन व बीमा योजनाएं। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वायो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम है।
1: हाँ दादू, न रजाई ओढ़ते बन रहा है, न पंखा चलाते बन रहा है।
0: जब भी ऐसा बदलता मौसम होता है, हमारे वृद्ध जनों के लिए मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसी हालत में तो उन्हें काफी सावधानी रखनी पड़ेगी ना बेटा।
1: बात तो बिल्कुल सही है दादू, इस समय तो एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता पड़ती ही है।
0: इस उम्र में तो खुद की सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना वायरल बुखार और फिर छींकते और खांसते खांसते जान निकल जाती है।
1: कोई बात नहीं दादू, मैं हूँ ना आपका ध्यान रखने के लिए।
0: ये तो है, लेकिन सब मेरी तरह इतने किस्मत वाले कहाँ।
2: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: बिटिया क्या कर रही हो, तैयार नहीं हुई? आज शो में नहीं चलना है क्या?
1: अरे वाह, क्या बात है ददू, आज तो आपको सब याद है, आप तो बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं।
0: हाँ हाँ हाँ बेटी, हमेशा थोड़ी ना भूल जाऊंगा, और वैसे भी हमारे श्रोताओं का इतना प्यार मिलता है कि वो हमें भूलने ही नहीं देते।
1: हाँ दादू, ये तो है, हमारे श्रोताओं का इतना असीम प्यार मिलता है कि हम उसमें सराबोर हो जाते हैं।
0: हमारे श्रोता ही हमारी जान है बिटिया, और मुझे तो सभी अपने दद्दू वाला प्यार देते हैं।
1: और मुझे तो सब यहाँ सर आँखों पर रखते हैं, मुझे तो ये सभी एक्स्ट्रा प्यार देते हैं।
0: चलते हैं तैयार होने, वरना ठंड ज्यादा है और आज देर हो जाएगी बिटिया। स्टूडियो पहुंचने में भी तो समय लगेगा ना, क्यों?
1: हाँ दादू, धूप भी बड़ी तेज हो रही है इन दिनों।
0: मैंने आज अपने एक दो दोस्तों को भी बुलाया है, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा और कुछ बातें भी कर लेंगे काम की।
1: बढ़िया है दादू, जल्दी चले फिर हम समय से अपना कार्यक्रम शुरू कर सके।
0: अरे हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, परेशान क्यों होती हो बिटिया, सब हो जाएगा और हम समय से प्रोग्राम भी शुरू कर लेंगे।
1: चलो मैं तो फिर फटाफट रेडी होके आती हूँ, वरना आप कहोगे कि लड़कियाँ तैयार होने में ज्यादा देर लगाती है।
0: हाँ बिटिया, मैं भी रेडी हो जाता हूँ।
2: कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूँ कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं, उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: चले दादाजी, मैं तो रेडी हूँ।
0: चलो बेटा, मैं भी एकदम रेडी हूँ।
1: फिर चलते हैं हम।
0: आज कुछ पुराने दोस्त मिल ही जाएंगे, मजा आ जाएगा। आज तो सच में बहुत मजा आएगा।
1: दादू, काफी उत्साहित लग रहे हो। कोई पुरानी याद ताजा हो रही है क्या? हमें भी तो बताइए।
0: अरे बिटिया, यादें तो खूबसूरत होती ही हैं। मुझे बस दोस्तों के साथ बिताए वो पुराने लम्हे याद आ गए, जब हम साथ में मिलकर शैतानियां करते थे और साथ में गाना गाते थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, फोड़ेंगे तेरा टकला मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे।
1: वाह दादू वाह, वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है कि आपने भी कोई शैतानी की होगी, मेरे सो कॉल्ड शैतान दादू।
0: अरे हमारा तो जमाना ही और था। खैर, हमारा स्टेशन तो आ ही गया।
1: अरे वहाँ कौन बैठा है दादू? लगता है आपका कोई दोस्त आ गया है, ये या कोई हमारा इंतजार कर रहा है।
0: अरे आओ, चलो तो मिलवाता हूँ अपने दोस्त से। ये मेरा दोस्त सुखिया है बेटी, और सुखिया भाई ये है मेरी पोती लक्ष्मी।
1: नमस्कार सुखिया दादू, कैसे हो आप?
3: जीते रहो बेटिया, जीते रहो।
1: दादू, क्या सुखिया दादू मुझे पहले से जानते हैं?
0: शायद तुम्हें याद नहीं लक्ष्मी, तुम्हारी पहले भी सुखिया से बातचीत हो चुकी है। तुमने पहले भी मेरे दोस्त को वृद्ध आश्रम के बारे में बताया था।
1: अरे हाँ, याद आया, मैं भी कितनी बुलक्कड़ हो गई हूँ। चलो सुखिया दादू, अंदर चलते हैं।
3: हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, अंदर ही चलते हैं।
1: भरत दादू, कार्यक्रम की शुरुआत का समय हो गया है,
0: तो आप चलते हैं और फटाफट शुरू करते हैं बिटिया कार्यक्रम आज का।
1: हाँ दादू। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, और मैं हूँ आपकी सबकी प्यारी और दुलारी पोती लक्ष्मी।
0: और मैं हूँ आप सबका चाहता, जिसके आप सब हो चुके हैं आदि, और जिससे आप सब कहते हैं भरत दद्दू।
1: ठहरिए श्रोताओं, अभी हमारे साथ में कोई और भी है। क्या हुआ दोस्तों, उत्सुक है ना आप लोग अगले शख्स के बारे में जानने को? तो लीजिए उनकी मुंह से सुनिए।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं भरत का प्यारा दोस्त सुखिया, आप सबसे मिलके बहुत खुश हूं।
1: और हम सब स्वागत करते हैं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में।
0: दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीके पर विस्तार से चर्चा भी करते हैं।
1: ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांग जन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्ग और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रम को चलाकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है।

0: 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता। और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी। और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। सीआरए द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: अच्छा बिटिया, सुनो तो, कल मुझे शंकर भाई मिले थे, तेरे बारे में पूछ रहे थे।
2: अच्छा, क्या कह रहे थे दादू?
1: अरे वो शंकर भाई बोल रहे थे कि तुमने सेज यानी SAGE के बारे में बताया था ना, उसे एक बार फिर बता दो।
2: ओहो शंकर दादू, इतनी जल्दी भूल गए। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ, आप सभी फटाफट नोट कर लो या रिकॉर्ड कर लो। दोस्तों, सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन योजना भारत सरकार की एक पहल है, जो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और उनके जीवन सत्र में सुधार के लिए शुरू की गई है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जून 2021 में शुरू किया गया था। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए तकनीकी और नवाचार आधारित समाधानों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
1: इस पहल के तहत किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है?
2: स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य सहायता, सामाजिक सेवाएं वरिष्ठ नागरिकों को समुदाय से जोड़ना, घरेलू सेवाएं दैनिक सहायता हेल्पलाइन सहायता, मनोरंजन और शिक्षा सेवाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल शिक्षा और गतिविधि केंद्र, स्वास्थ्य।
1: सचमुच ये पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है। लेकिन सेज यानी SAGE सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन योजना का उद्देश्य क्या है?
2: इसका उद्देश्य ऐसे स्टार्टअप्स को वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग देना, जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए नए उत्पाद और सेवाएं विकसित कर रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिक देखभाल का इकोसिस्टम विकसित करना है, जिसे बुजुर्गों के स्वास्थ्य कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त वातावरण तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना भी है, जहां बुजुर्ग अपनी जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्राप्त कर सके।
1: वाह वाह बेटा, वेरी गुड वेरी गुड।
2: दादू देखा कितना आसान है, चुटकियों में समझा दिया ना।
1: अरे तो मेरी बिटिया है ही होशियार, तुम्हारे कहने ही क्या।
3: हाँ भरत, बिल्कुल, लक्ष्मी बिटिया तो हम बुजुर्गों के लिए देवदूत बन के आई है।
2: ये सब तो आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मुमकिन है दादू।
4: उम्र के उस पड़ाव में जब कोई नहीं है साथ, भारत केंद्र सरकार की अटल वयो अभ्युदय योजना थामेगी आपका हाथ।
5: आंखों में छा रही है मोतियाबिंद की परत, तो केंद्र सरकार की योजना में मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी है उपलब्ध।
4: उम्र के सुनहरे मोड़ पे आर्थिक तंगी से है परेशान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना करेगी आर्थिक सहायता प्रदान।
5: बुजुर्गों को भरण पोषण का भी मिलेगा अधिकार।
4: स्वास्थ्य को लेकर यदि है परेशान, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है समाधान।
5: वृद्धों की देखभाल करने के लिए वृद्धावस्था देखभाल करता प्रशिक्षण भी है साथ।
4: और सारी समस्याओं का समाधान एक साथ मिलेगा एकीकृत कार्यक्रम IPSC के माध्यम से।
5: इसके बाद भी अगर है कोई परेशानी तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हेल्पलाइन नंबर पर 14567 पर,
4: यानी कि 14567 पर। और ऐसे ही वरिष्ठजनों से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सुनते रहिए आपका अपना रेडियो।
2: सुखिया दादू, वैसे आप आ कहाँ से रहे थे? अभी पसीने से लथपथ हुए पड़े थे, इतनी गर्मी तो नहीं है अभी?
3: क्या करूँ बेटिया, बताया था ना पिछली बार कि बच्चों ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया। काम धाम करने की स्थिति में हूँ नहीं, तो किसी तरह दवाइयों के लिए पैसे की व्यवस्था करने गया था कई लोगों के पास।
1: अच्छा, कैसे की तुमने अपने खर्चों के लिए पैसे की व्यवस्था? पेंशन तो तुम्हें मिलती है ना महीने में?
3: पेंशन तो मिलती ही है भरत भाई, मगर खर्चे ज्यादा है ना, तो सरकारी पेंशन से कहाँ काम चलता है।
1: अरे तो इस उम्र में क्या तुम कर्ज लेने गए थे क्या?
3: अब इस उम्र में हमें कर्ज कौन देगा भाई, ले दे के मेरे पास अपनी जमीन ही है, उसमें से एक टुकड़ा बेचा है भाई, अपने शरीर का एक एक अंग काट के आ रहा हूँ।
1: अच्छा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है सुखिया भाई, तुमने खरीदी थी तो बेच दी तुम ही ने, इसमें क्या बड़ी बात है?
3: वो तो ठीक है भाई, मगर पैसा तो खत्म हो जाएगा ना, फिर कुछ समय में फिर बेचनी पड़ेगी जमीन।
2: टेंशन ना लो दादू, अब बिल्कुल नहीं बेचनी पड़ेगी जमीन आपको।
3: अच्छा, तो मेरा फिर काम कैसे चलेगा ये बताओ बिटिया।
1: हाँ लक्ष्मी, इसी की तो मजबूरी हो जाती है ना।
2: अरे दादू, आपकी पोती है ना, मैं आपको सारी पेंशन और बीमा योजनाओं के बारे में बता देती हूँ, हमारे श्रोताओं को भी जानकारी हो जाएगी।
3: हाँ हाँ बिल्कुल बिटिया।
2: देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है, इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये योजना उन वृद्ध लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये योजना वृद्धावस्था विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए है। अन्नपूर्णा योजना, ये योजना 65 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है।
1: अच्छा, महिलाओं के लिए अलग से भी एक योजना है, गुड है जी।
3: वैसे इन सारी योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध लोगों, विधवाओं और विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन को गरिमा के साथ जी सके।
2: ये तो हुए पेंशन योजनाओं के नाम जिनको सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब मैं कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताऊंगी जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित की जाती है।
1: लेकिन उससे पहले मैं सुनाता हूँ अपने अंचल का एक लोकगीत।

0: मैंने तो सुनवा दिया लोक संगीत, अब लक्ष्मी तुम बताओ कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा संचालित की जाती है।
1: जी, उनमें से पहली योजना है जीवन अक्षय योजना। ये एक पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की है, ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन के बाद के चरण में एक निश्चित आय की गारंटी चाहते हैं।
0: जीवन अक्षय योजना, अच्छा, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है?
1: इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। ये योजना जीवन भर आय प्रदान करती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन के बाद के चरण में वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है, और इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर लाभ भी मिलता है। दादू, इस योजना में आप अपने पैसे को जमा कर दीजिए।
0: अच्छा, कर दी ना बच्चों वाली बात। जब जमा करना होता तो ये जमीन बेचता ही क्यों?
1: मेरे प्याले दादू, पूरी जानकारी तो ले लो पहले। आप जीवन अक्षय योजना के लिए पात्रता मापदंड क्या है ये तो जान लो।
0: हाँ हाँ, बताओ।
1: इस योजना के लिए आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, और इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है जो कि न्यूनतम 1,00,000 रुपए और अधिकतम 50,00,000 रुपए हो सकता है।
0: जीवन अक्षय योजना एक अच्छा विकल्प लग रहा है ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अपने जीवन के बाद के चरण में एक निश्चित आय की गारंटी चाहते हैं।
1: इसके तहत आप जब अपने पैसे जमा कर दोगे तो उस पे निश्चित दर से ब्याज मिलेगी, और इस ब्याज के पैसे से आपको पेंशन मिलती रहेगी, समझे दादू?
2: अरे वाह भाई वाह, क्या बात है इस योजना की।
0: लेकिन ये कहीं शेयर मार्केट के जैसा तो नहीं है ना? पैसे डूबेंगे तो नहीं?
1: ये योजना एक गारंटीड पेंशन प्रदान करती है जो बाजार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है, और तो और इसका नियंत्रण भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC करती है, तो कोई रिस्क नहीं है दादू।
0: नो रिस्क वाली और कोई योजना भी है क्या?
1: हाँ बिल्कुल है, जीवन शांति योजना एक और पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य भी वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन के अंतिम चरण में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है, और वरिष्ठ नागरिक अपने निकटतम बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है, जो कि अन्य पेंशन योजनाओं की तुलना में कम है। जीवन शांति योजना के लिए आवेदन करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
2: वाह भाई भरत, ये तो गजब की योजना है भाई।
1: इतना ही नहीं दादू, यदि नियमित पेंशन चुनी गई है, ऋण लेने या पॉलिसी बंद करने पर पेंशन की राशि पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि पॉलिसी सरेंडर ना कर दी गई हो।
0: हेलो, ये तो बम पे बम फोड़े जा रही हो बिटिया आज।
1: इसके अलावा एक योजना के बारे में और बताकर एक बम और फोड़ती हूँ।
0: एक और योजना?
1: जी हाँ, ये है न्यू पेंशन प्लस योजना। इसमें भी वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है, जीवन भर आय मिलती है। इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर यानी टैक्स का भी लाभ मिलता है, और इसमें विकलांगता और मृत्यु लाभ भी शामिल हो, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन ये एक यूलिप योजना है।
0: ये क्या होता है?
1: यूलिप का तात्पर्य यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से है। ये एक जीवन बीमा पॉलिसी है जो आपको वित्तीय बाजारों में अपना पैसा निवेश करने की भी अनुमति देती है। यूलिप बीमा और निवेश का संयोजन है, तथा ये आपके प्रियजनों की सुरक्षा करते हुए आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है।
3: सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे बड़े और बुजुर्ग, खाइए अच्छा, खाइए स्वस्थ भोजन, रहिए फिट ताकि सेकंड इनिंग हो हिट।
4: That's a super six.
5: बात तो सही है, पर हमारे ऐसे बुजुर्गों का क्या जो है आर्थिक रूप से कमजोर, जिनसे है पोषण बड़ी दूर।
3: अरे भाई, भारत सरकार लेकर आई है अटल अभ्युदय योजना का बुजुर्ग पोषण अभियान। अब ना रहेगा कोई भी मजबूर, सबको मिलेगा पोषण भरपूर।
5: कैसे कैसे?
3: वो ऐसे, पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया। अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। हाँ, और बुजुर्गों के लिए लोकली उपलब्ध फल, सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रोज का भोजन भत्ता 20 रुपए निर्धारित है। इसमें समुदाय आधारित संगठनों जैसे कि गांव के बुजुर्गों के स्वयं सहायता समूह NRLM के तहत संगठित स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी केंद्रों और गांव में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग भी लिए जाएंगे। तो हो गया ना सबके फिट और बुढ़ापे के हिट बनाने का इंतजाम, तो बढ़ेगा हमारे बड़ों का स्वास्थ्य और उनका सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगठन के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: वाह भाई वाह, गजब है ये तो आम गुठलियों के दाम। अब जल्दी से हमें इस योजना में आवेदन करने का तरीका बता दो बिटिया।
1: इस योजना के लिए आवेदन LIC की शाखा, अधिकृत एजेंट या LIC की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से किया जा सकता है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। साथ ही आवेदक भारत का नागरिक, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। प्रवासी भारतीय, NRI या विदेशी नागरिक इस योजना के पात्र नहीं है।
2: मैं तो आज ही जाके इस योजना का लाभ लेता हूँ बिटिया।
1: हाँ दादू, आप खुद भी लेना और साथ में अपने दोस्तों को भी बताना।
2: जरूर बिटिया जरूर।
1: तो अब इस एपिसोड के समापन करें दादू, क्यों?
0: ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्धजनों के लिए सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन की जानकारी और बीमा योजनाओं के बारे में भी बताया, जिससे आप सुन रहे थे आपके अपने सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, और इससे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में।
1: दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1456 लगा सकते हैं।
3: सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
1: तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
0: तो अब हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में।
1: तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।
0: नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 15, सेज SAGE, वरिष्ठ नागरिक पेंशन व बीमा योजनाएं। इस कार्यक्रम में दद्दू के किरदार को आवाज दी भारत सोपोरी ने, लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी किरणी दास ने, सुखिया के किरदार को आवाज दी राहुल अलियान ने। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ, मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का कुछ क्षणों में शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम राम राम हरियाणा, जो लाइव होगा सभी हरियाणा के सामुदायिक रेडियोज पर। और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का नंबर है 8816-904-904। नंबर एक बार फिर बता देते हैं, 8816-904-904। कुछ क्षणों में शुरू होने जा रहा है ये लाइव कार्यक्रम राम राम हरियाणा।

0: Trial version.
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं भारत सोपोरी, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता से, और
0: Trial version.
1: उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आवाज मिल रही है। और स्वागत और अभिनंदन सभी श्रोताओं का जो इस समय हमें सुन रहे हैं
0: Trial
1: रेडियो
0: version.

0: कहाँ?
1: हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो पर
2: ट्रायल वर्जन
1: प्रसारित होता है, जिसका समय होता है शाम के 4 बजे से लेके 5 बजे तक। और दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं जिला चरखी दादर के जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी जी। और दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसके लिए हमारा नंबर है 88
2: ट्रायल वर्जन
1: 16904904।
3: प्रीतम जी,
1: भारत जी,
3: प्रीतम जी नमस्कार, और डॉक्टर वीरेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: ट्रायल वर्जन
3: पर इस सॉफ्टवेयर में एक वॉइस आ रही है बार बार ट्रायल वर्जन की, जो हमारी जो बातचीत है उसको बाधित कर रहा है, तो कृपया इसका कुछ समाधान कीजिए। और या तो इसका सॉफ्टवेयर का कोई इश्यू है जो ट्रायल वर्जन बार बार हमें बता रहा है। और गुरबिंदर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मैं जैसे ही बोलने लगा तो ये ट्रायल वर्जन बोलने लगा, तो प्लीज इसको ठीक करें सर, धन्यवाद।

0: जी प्रीतम जी, मुझे लगता है कि समस्या का समाधान हो
1: ट्रायल
0: गया है।
1: वर्जन। ट्रायल वर्जन।
0: वीरेंद्र सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास।

0: वीरेंद्र सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
1: जब तक वीरेंद्र सर की
0: भारत जी, जब तक आप संभाली,
1: ठीक है ठीक है, जब तक वीरेंद्र सर की आवाज आती है हमारे पास, तब तक मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सुन रहे हैं इस समय राम राम हरियाणा, जो लाइव होता है रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से, और अपना रेडियो चरखी दादरी से, रेडियो अरावली नारनौल से, रेडियो गोंदर करनाल से, रेडियो MGF पलवल से, रेडियो इरादा कुरुक्षेत्र से, और रेडियो सांझा यमुनानगर से। सभी का स्वागत अभिनंदन। और हमारी जिंदगी में जब भी कुछ इश्यूज आते हैं, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में हर दिन होते हैं, हमें उन इश्यूज के साथ चलना पड़ता है, और उसके बाद हम जिंदगी को आगे चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें रास्ता उसी के बीच बनाना होता है। आप सभी का
2: भरत जी, जी भरत जी को गीत भूल गए क्या? जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये जो दिक्कतें परेशानियां अड़चने बाधाएं रोड ब्लॉक्स स्पीड ब्रेकर ये तो आते रहते हैं, और कामयाबी का तरीका या जीवन जीने का तरीका ये है कि बाधाओं को हटाते चलो, चीरते चलो, और कभी कभी नजरअंदाज करते चलो।
1: मैंने
2: ये जो
1: जी जी मैंने सर वहीं से शुरू किया, और इन बाधाओं से ही हमें बीच में इनके रास्ता बना के हमें आगे चलना, और हम आज तक बाधाओं को क्रॉस करके ही चलते आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जैसे हम आज तक कामयाब हुए हैं, आगे भी कामयाब होंगे। मैं हरियाणा के सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और ये बताना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, आप अपनी बात इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। आज हमारे जो इस कार्यक्रम में मेहमान होंगे वो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री धर्मिंदर चौधरी जी, जो चरखी दादरी में कार्यरत है, उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा सभी श्रोताओं को, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप डायल करें 88 16 904 904, नंबर एक बार फिर 88 16 904 904। आज है 14 मई 2026 बृहस्पतिवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी 2083 विक्रम संवत, और क्योंकि हमें अपने संस्कृति के साथ जुड़े रहना जरूरी है, तो हमें हिंदी तिथि के बारे में भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। हम कोशिश करते हैं कि हर दिन हम आपको ये बता दें कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जिसके बारे में हमें जानना और सुनना बहुत जरूरी है। और सर वीरेंद्र सर, आपने सही फरमाया कि जब मुश्किलें आती हैं तो हार नहीं माननी चाहिए, और हम कभी हार नहीं मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि जो भी हम काम करते हैं या तो हम जीत जाते हैं या तो हम सीख जाते हैं, तो हारते तो कभी भी नहीं है। तो टेक्निकल इश्यूज तो सारी जिंदगी में है, और आप जब हमारे सामने होते हैं तो हमारी बाधाएं तो वैसे ही दूर हो जाती है। और आज उम्मीद करता हूं कि आज के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो चरखी दादरी के हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम सभी बात करेंगे, और हो सकता है कि हरियाणा के अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी लोग हमें कॉल करें और उनसे सवाल पूछेंगे, जो भी सवाल हो, चाहे वो चरखी दादरी के साथ बिलोंग नहीं करता हो, सिस्टम तो एक ही है, तो हाँ वो उनसे सवाल क्वेश्चन करेंगे, और इसी उम्मीद से कि आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बहुत ही जानकारियों का रहेगा, और आशा है कि चरखी दादरी जैसे इस कार्यक्रम में रेडियो अपना चरखी दादरी का इस कार्यक्रम में अपना योगदान देता रहा है, आगे भी देता रहेगा, साथ में वितस्ता की लहरें भी नारनौल की पहाड़ियों के साथ और साथ में रेडियो गोंदर के साथ जुड़े हैं। तो वीरेंद्र सर आपका आपकी ओर मैं माइक भेज रहा हूं, और मैं स्वागत करना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री धर्मिंदर चौधरी जी का। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, अगर आपको हमारी आवाज मिलती है तो आपका स्वागत अभिनंदन इस कार्यक्रम में।
3: जी सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: जी धर्मेंद्र जी, कर सकते हैं अपनी बात, आपका स्वागत है।
3: जी जी
2: आगे आगे आगे फिर चलेंगे। धर्मेंद्र जी सबसे पहले तो ये बताओ कि आप मूल निवासी कहाँ के हो, और आपका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और कितने साल की हो गई शिक्षा विभाग में आपकी नौकरी?
3: जी मेरा जन्म स्थान यही होम डिस्ट्रिक्ट भिवानी जिला है और भिवानी जिला में लोहारू के पास बारवास गांव है, तो मेरी शुरू की आरंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई है, पांचवी तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ हूँ
4: जी।
3: तो मैं बेहतर तरीके से हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों उनकी हर प्रकार की दुख तकलीफ और बाधाएं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ और पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी बच्चे के कोई किसी प्रकार की जिस भी शिक्षा के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उनके किसी प्रकार की रुकावट ना आए।
2: देखिए मैंने मैंने चौधरी साहब मैंने अपनी बात जो है ना थोड़ी सी हरियाणवी लैंग्वेज में कहनी शुरू करी। इस बीच में एक हमारे सरपंच मित्र हैं सुनील जी उझाणा जिला जीन नरवाणा खंड में उनका गांव पड़ता है और उनका एक कमेंट आ गया कि यू प्रोग्राम जो है ना वो हरियाणवी में ही होना चाहिए। तो मन्नत तो कोई दिक्कत नहीं, हरियाणवी में हिंदी में कोई अंतर भी नहीं है, लेकिन बोली हरियाणा में ग्रामीण अंचल में जो हरियाणवी अलग अलग तरह की बोली जाती है, कहीं कोरवी है, कहीं पुआधी है, कहीं बागड़ी है, हरियाणवी भी कहीं ढाल की है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े अगर वो अपने गांव की अपनी गली की और अपनी माँ की बोली में बोलेगा तो भाई स्वाद आ जाएगा। मैं तो अक्सर प्रीतम जी से भी कहता हूँ कि प्रीतम जी उधरवाड़ी में बोल लिया करो। मनीष जी को भी कहता हूँ भाई वही दक्षिण हरियाणा का तड़का ना लगे। अब जैसे हमारे
1: और मैं तो
3: आपकी बात पूरी रखी है सरपंच साहब को और आप सभी को राम राम
2: जी। बहुत बढ़िया। तो एक बात मैं ये यहाँ से शुरू करते हैं आज आपके आपसे बातचीत का सिलसिला। जो आपने बताया कि आप गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े और इन दिनों सरकारी स्कूलों के आप एक जिला के चौधरी हैं, एक जिला के प्रमुख हैं, सरकारी स्कूलों की दशा दिशा के बारे में आपसे बात करना वो उपयोगी और प्रभावी हो सकता है। इससे पहले कि कोई हमारे श्रोता फोन करके 88 16 904 904 पर सवाल करें, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके जिले में इस समय कुल कितने सरकारी विद्यालय हैं आपके मातहत और उन विद्यालयों में कुल कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक मोटा सा आंकड़ा दे दीजिए, एक चित्र खींच दीजिए कि दादरी में साहब नजारा ये है।
3: देखिए जी आपने अभी अभी हरियाणवी भाषा का जिक्र किया है तो मैं उस बात पे एक बहुत ही खुशी आपके साथ मैं अभी साझा करना चाह रहा हूं, उसके बाद विद्यालयों पर भी आएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे जिला चरखी दादरी ने अभी बिल्कुल बच्चों ने और टीचरों ने मिलके एक लठ गाड़ दिया और वो क्या है आप अगर अखबार के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हो तो पिछले 5 दिन पहले हमारा 12वीं का रिजल्ट आया था बोर्ड का, उसमें जिला दादरी सबसे टॉप रहा, जिला दादरी प्रथम पोजीशन पे रहा।
1: बधाई हो।
3: और आज
2: बहुत बधाई आपको दादरी के सभी बच्चों को। सबसे बड़ी उपलब्धि दादरी के किसी विद्यार्थी की क्या रही वो जरा और थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए इस उपलब्धियों को जब आप।
3: मैं अभी उसी बात पे और आ रहा हूं आपके कि हम 22 जिलों में प्रथम पोजीशन हासिल करने में रहे और हमारा प्रतिशत रहा 91.8 जबकि बोर्ड का प्रतिशत 84% था, तो उससे हम कितना आगे निकले हैं टीम वर्क, बच्चों की मेहनत और हमारे गुरुजनों के मार्गदर्शन में। और जो आपने बच्चों की उपलब्धियां पूछी हैं तो मेरे जिला चरखी दादरी के 3 बच्चे राज्य भर में सेकंड पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे और 1 बच्चा हमारा राज्य में 4th पोजीशन पे रहा।
1: जी चौधरी साहब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। बहुत सारे प्रश्न है हमारे मन में और हम आज इस कार्यक्रम में आपको सुनना चाहेंगे और हमारे जो श्रोता है उनके मन में भी बहुत सारे जिज्ञासाएं होंगी जिनके सवालों के जवाब वो आपसे चाहेंगे। कुछ मेरे मन में आती हैं, मैं अपना प्रश्न पहले करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि सबसे पहले मैं ही पूछूं और माफ कीजिएगा मैं हरियाणवी तो पूरी तरह से नहीं। जी जी मैं हरियाणवी पूरी तरह से तो नहीं बोल सकता जी,
3: बीच में बात थोड़ी सी आधी रह गई थी यार
1: जी जी।
3: तो ये तो हमारा अभी पिछले हफ्ते का चौका था, आज 1 छक्का और हमारी टीम ने मार दिया सिक्सर और 1 लठ और गाड़ दिया जी। और वो ये था कि आज 10वीं क्लास का बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें भी जिला चरखी दादरी टॉप पे रहा, 22 जिलों में प्रथम पोजीशन हासिल की है। तो तो ये हमारा जिला छोटा सा जिला है और ज्यादातर विद्यालय और बच्चे ग्रामीण अंचल में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी दिन रात मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बलबूते आज ये दोनों मुकाम हमें हासिल हुए हैं। और इस दसवीं के रिजल्ट में भी हमारी एक बच्ची रौनक है, बिगोवा से है और उसने राज्य भर में 498 अंक प्राप्त करके सेकंड पोजीशन हासिल की है स्टेट में।
1: जी चौधरी साहब, अब हम आपसे प्रश्न कर सकते हैं?
3: हाँ जी जी जी
1: चौधरी साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो इस समय अभी बताया बच्चों के बारे में और वो बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप सभी का योगदान तो जरूर है। जो टीचर्स है, जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके लिए आपकी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके से वो मन से स्वस्थ है जब वो स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं? क्योंकि अगर स्कूल का माहौल पढ़ने पढ़ाने का है तो इसमें कोई शक नहीं है, बच्चों को भी दिलचस्पी लगती है। किस तरीके से आप बच्चों की दिलचस्पी पढ़ने में लगाते हैं और टीचर्स का क्या योगदान उसमें रहता है और आपका क्या निरीक्षण रहता है और कब कब रहता है?
3: देखिए, हमारा नियमित तौर पे विद्यालयों में निरीक्षण होता रहता है और पूरे वर्ष का एक कैलेंडर है जिसमें समय समय पर खेल कल्चरल प्रोग्राम और अन्य गतिविधियां होती रहती हैं। तो इसमें हमारे कुछ काफी क्लासरूम्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से सभी क्लासरूम्स में लर्निंग टूल्स हैं और जिसमें कहते हैं ना खेल खेल में पढ़ाई, तो बच्चों को बहुत ही मनोरंजक तरीके से हमारे अध्यापक पढ़ाते हैं। तो मैं जितने भी विद्यालय में जाता हूं, आप स्वयं भी कभी भी आके हमारे विद्यालय निरीक्षण कर सकते हैं, बच्चों के चेहरे पे हमेशा खुशियां रहती हैं और किसी प्रकार का हमारे अध्यापक साथियों पे या बच्चों पे किसी प्रकार का कोई मानसिक दबाव नहीं। हमने पहली बात यही बोली हुई है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बताए, किसी भी संसाधन की कमी हो हम दूर करेंगे।
1: जी, जब तक और प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न मैं और करना चाहूंगा। इस समय हमारे देश में जनगणना का पहला चरण चल रहा है और बहुत सारे टीचर्स उनकी ड्यूटी लगाई गई है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। आप इस समय रेडियो वितस्ता 90.0 अंबाला के श्रोता आपको लाइव इस समय सुन रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ के लोगों के भी कुछ आपके प्रश्न आपके लिए हों। और जिनके सवाल हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे एक श्रोता का प्रश्न था, वो ये था कि जब हमें इस जनगणना के कार्य पर जाना है, हमें स्कूल से कोई राहत नहीं मिलती है। अगर हम 3 बजे तक या 2 बजे तक स्कूल में है, उसके बाद जब वो 2:30 बजे या 3 बजे जाते हैं तो लोग आमतौर गर्मी ज्यादा है, लोग सोए होते हैं, तो वो इस तरीके से वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि उनका घर परिवार बच्चे भी हैं। तो क्या ऐसी सुविधा है उनको कि स्कूल से उनको 1 घंटा पहले फ्री किया जाए और वो अपना स्कूल का कार्य भी करें, जो बहुत जरूरी काम है वो भी करें, और साथ में जो भारत देश के लिए हमारा दायित्व है उसको भी अच्छे से निभाएं और खुशी खुशी निभाएं?
3: देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि एक सेंसस ड्यूटी बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी है। जैसे चुनाव में ड्यूटी होती है तो उसी प्रकार ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है और देश के विकास के कार्य के लिए नितांत आवश्यक है। तो हमारे क्योंकि पूरा सरकार को भरोसा रहता है, केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को, कि अध्यापक जो भी कार्य करेंगे बड़ी निष्ठा से करेंगे और सही आंकड़ों के साथ। तो ड्यूटियां तो हमें इसलिए दी जाती हैं कि हम सारी ड्यूटियां बहुत अच्छे निष्ठापूर्वक निभाते हैं। अब रही आपकी सेंसस की ड्यूटी की बात, तो सेंसस में आपको बताना चाहूंगा कि ये 31 मई तक सेंसस का कार्य खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेंसस पे कोई भी कार्य चलेगा वो फरवरी 2027 में आरंभ होगा
1: जी।
3: तो अभी टीचरों की आपने बताई समस्या, इसमें भी पीछे विभाग का लेटर सरकार ने सुनी ये बात और ये बोला हुआ है कि भाई घंटे 2 घंटे अपने स्कूल के आवश्यक कार्य निपटा के और आप जनगणना का कार्य कर सकते हैं, उसमें रिलीफ दिया हुआ है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र सर जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर वीरेंद्र सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, या आप अनम्यूट।
0: भारत जी, तब तक मेरा एक सवाल था कि हाँ, हम जब प्रोग्राम करते हैं
1: जी जी प्लीज प्रीतम जी,
0: मैं जिला शिक्षा अधिकारी चरखी दादरी का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे स्टूडियो में आए और बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करेंगे, क्योंकि हम हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है राम राम हरियाणा, इसमें जो सरपंच आते हैं उनकी एक शिकायत होती है, लगभग ये सभी सरपंच ये कहते हैं कि हमारे गाँव में सरकारी स्कूलों की जो बच्चों की संख्या है वो कम हो रही है, या कोई कहता है कि हमारे पास शिक्षक नहीं है। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ, श्रीमान, ऐसी भी कोई स्कीम है क्या जिसके तहत बच्चों की संख्या बढ़ा सके, पंचायती स्तर पे काम कर सके? तो पंचायतों को आप कैसे, सरपंचों को कैसे बताओगे कि ये कैसे करें स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े? जी,
3: मैं आपको सर बताना चाहूंगा कि जब भी मैं विद्यालयों में जाता हूँ या हमारी मीटिंग होती है तो मैं अध्यापकों से हाथ खड़े करके ये पूछता हूँ भी सरकारी विद्यालयों में कौन कौन पढ़े हुए हैं, तो 95% हम अधिकारी भी और हमारे अध्यापक साथी भी ज्यादातर 95% इन्हीं सरकारी विद्यालयों से पढ़ के और यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी स्टाफ है वो फुल्ली क्वालिफाइड है, फुल्ली ट्रेंड है। लेकिन ये आजकल एक दूसरे की देखा देखी बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं आधे, तो अगर माँ बाप उनको ज्ञान नहीं होता, अगर उनके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करें तो किसी के पास पूरी मान्यता नहीं होती, किसी के पास क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होता, तो कुछ गुमराह हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप, इसमें भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने भी दोनों रिजल्टों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, मेरा अपना ये मानना है कि बच्चा कोई भी हो, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला हो चाहे प्राइवेट, उनमें किसी प्रकार की कोई टैलेंट की कमी नहीं है। और मैं बच्चों को बार बार जिस भी विद्यालय में जाता हूँ उनको यही आश्वस्त करता हूँ कि भाई मैं भी पांचवीं तक और आगे कॉलेज में भी मैं सरकारी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो आप लोगों में पूरा टैलेंट है और आप किसी प्रकार अपने आप को इन्हें विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों पढ़ते हुए किसी प्रकार आप अपने आप को कम ना करो, हमारे में उतना पूरा टैलेंट है। अभी आपको और मैं बता दूं कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे अंडर 17 क्रिकेट की चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप पर हमने अभी कब्जा किया जिला दादरी, तो ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ा सा कुछ पेरेंट्स गुमराह हो जाते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि भाई हम गलत जगह फंस गए, फिर वो नेक्स्ट ईयर हमारे पास आते भी है।
2: मेरा मेरा प्रश्न थोड़ा सा भिन्न है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक चौधरी साहब?
1: पहुंच रही सर।
2: मैं ये समझना चाहता हूं कि आप जिला जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व आपके पास कितने समय से है?
3: सर मेरे पास दादरी तो अभी 7-8 महीने से है, पहले मैं जिला यमुनानगर में था, तो मैं यहाँ अक्टूबर में मैंने कार्यभार ग्रहण किया था, तो मुझे थोड़ा ही समय हुआ, अभी साल भर भी नहीं हुआ है, तो ये 6-8 महीने की इतनी उपलब्धियां हैं हमारी, हम काम करने में लगे हुए हैं टीम वर्क, तो ये इतने कम समय की ये उपलब्धियां मैंने आपको बताई।
2: हरियाणा के सरकारी स्कूलों के तंत्र में पिछले 5 वर्षों में क्या बड़ा परिवर्तन हमारी सरकार, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे शिक्षा मंत्री ला पाए हैं? अगर आपको ये बताना हो 5 साल में हमने अपने गामा के सरकारी स्कूलों में यो बड़ा बदलाव कर दिया, भाई ये सुथरे हो गए, यो समस्या खत्म होगी, यो जीसा आ गया, ये हमने बढ़िया कर दिया, मारे आओ मारे पढ़ाओ अपने बालका ने, ऐसी कोई 2-3-4 चीजें बताएंगे क्या?
3: हाँ बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखिए पिछले 3-4 सालों से शिक्षा विभाग ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पूरा जोर दिया हुआ है। आप ये देखेंगे कि हर विद्यालय का प्रांगण बहुत साफ सुथरा, और हमारे पास बजट आता है जिसमें सौंदर्यीकरण का, उसके तहत हम रूम्स में भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वॉल पेंटिंग वगैरह सब करके, और मेन गेट है, वो मेन गेट भी हमने बहुत अच्छे से स्टील के अक्षरों से हमने ज्यादातर स्कूलों में लिखवाया हुआ है। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि प्रांगण और विद्यालय की बिल्डिंग अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, तो उसके प्रति पिछले 4-5 साल से सरकार पूरा ध्यान दे रही है, और समय समय पर जिस भी विद्यालय की जो ग्रांट होती है वो जेई से एस्टिमेट बनवा के मुख्यालय भेजते हैं और वो पैसा हमें तुरंत मिल जाता है, चाहे टॉयलेट का हो, क्लासरूम का हो, लैब्स का हो, सब प्रकार के। उसके अलावा पीएम श्री स्कूल है, तो उसमें भी इन्हीं 5 सालों के दौरान मैं बता रहा हूँ कि ब्लॉक लेवल पे और हर जिले में चार चार पांच पांच स्कूल पीएम श्री मॉडल बनाए हैं, तो वो सीबीएसई स्कूल बोर्ड से एफिलिएटेड है। तो अब पेरेंट्स को ये भी शिकायत नहीं कि भाई सीबीएसई में नंबर ज्यादा आते हैं, तो जो बच्चे सीबीएसई माध्यम से पढ़ना चाहें, तो ये भी हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है।
1: चौधरी साहब, कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ सवाल आए हैं आपके लिए सोशल मीडिया से, तो वो मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। ललित उत्तम लिखते हैं, बच्चा कोई भी हो सभी को मौका मिलना चाहिए, पर सरकारी स्कूल की व्यवस्था की वजह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। और साथ ही ये लिखते हैं, बहुत कम एग्जांपल्स है सरकारी स्कूल्स के सक्सेस रेट की, प्राइवेट स्कूल से कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं निराश नहीं हूं, हमने सरकारी स्कूल की मैनेजमेंट ठीक करनी चाहिए, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन और फैसिलिटीज में बहुत पीछे है सरकारी स्कूल्स। ये लिखते हैं ललित उत्तम, तो कृपया इनका जो उत्तर है वो दीजिए।
2: ललित उत्तम जो हैं हमारे साथी हैं चौधरी साहब, ललित उत्तम जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, आईटी के विशेषज्ञ हैं और सिडनी से ये कमेंट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। दूसरी बात, ललित उत्तम मुझे लगता है एक आध साल जरूर सरकारी स्कूल में भी पढ़े होंगे, जैसे चौथी कक्षा तक मैं भी पढ़ा हूं। उससे एक अगली बात यह है कि ललित उत्तम जी की माताजी स्वयं सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी, तो सरकारी स्कूलों के तंत्र में कहां ढिलाई है ललित भाई को उसका भी अनुमान होगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर ललित जी हमारे साथ वीडियो पर भी जुड़ जाएं, बात को और ढंग से भी हम और थोड़ा विस्तार से कर सकते हैं। मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि आप और हम जब गांव में जाएं तो हम किन किन बातों के आधार पर गांव के बाशिंदों को, ग्रामीण हरियाणा के लोगों को ये कह सकते हैं कि आपके गांव में जो दो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं या पास के कस्बे में जो स्कूल खुले हुए हैं उनके यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, हम उनसे बेहतर हैं। किन किस किस मायने में मेरे मेरे हरियाणा के या दादरी के कुछ सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से बेहतर हैं, इसका थोड़ा चित्र खींचेंगे, कंपैरेटिव सा एक एनालिसिस कर देंगे धर्मेंद्र जी, तो मन दिखा लोगों का समझ में आओगी बात।
3: देखो, आपने ललित की बात बताई तो सबसे पहले मैं आपको भी ये बात बता रहा हूं और ललित को भी ये बात सुना रहा हूं कि भाई आपने खुद कहा है आपकी मम्मी सरकारी टीचर रही है, तो भाई आपकी मम्मी ने सरकारी टीचर होते हुए आपको पढ़ा के और आईटी एक्सपर्ट प्रोफेशनल बना के सिडनी भेज दिया, तो जब आपकी मम्मी ने भेज दिया तो और बच्चे क्यों नहीं जा सकते। ये सारा डिपेंड है थोड़ा सा पेरेंट्स का। हमारे पास जो बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स से जैसे थोड़ा सा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उनका बहुत पुअर होता है, कोई मजदूरी करने जाता है कोई, तो वो बच्चों को संभाल नहीं पाते। मैं ये एक फर्क जो सबको दिखता है कि प्राइवेट स्कूल में 80% बच्चे तो घर से सेल्फ मेड करके पेरेंट्स पूरा बाद में भी ट्यूशन लगाते हैं, घर पे भी 5-5, 6-6, 8-8 घंटे पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में तो जितना हमने स्कूल में पढ़ा दिया उसके बाद बच्चे घर पे उनको कोई खेती के काम में लगा लेता है, कोई और अन्य कार्यों में, तो ये एक थोड़ी सी उसमें बाधक बात बनी हुई है क्योंकि बच्चे थोड़ा सा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऐसे आते हैं कि वो माँ बाप समय नहीं दे पाते।
2: ललित जी मजाक, सिडनी बैठे बैठे ललित जी मजाक कर रहे हैं कि सर आप भी सारी की सारी खोल दो। भाई ये खुला मंच है ललित भाई, सारी ही खुलनी चाहिए, खुलन खातर ही बैठे हैं हम तो यहाँ। दोस्तों, आप राम राम हरियाणा देख और सुन रहे हैं और राम राम हरियाणा हमारा हरियाणा के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का एक साझा मंच है जिस का विचार हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान से पैदा हुआ और जिस मंच को हम हरियाणा भर के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की मदद से चला रहे हैं, उनकी प्रतिभागिता के कारण ही इस कार्यक्रम का नाम राम राम हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा भर के, हरियाणा के अलग अलग कोनों के दर्शक श्रोता वो हमसे जुड़ पाते हैं। अगर जिक्र करना शुरू करें कि कहां कहां हम देखे सुने जाते हैं, देखे तो साहब सारी दुनिया में जाते हैं, ललित जी सिडनी में बैठ के हमको देख रहे हैं, कोई कनाडा में भी हरियाणा में देख रहे होंगे, कोई अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और जो जो लैंड पर धराधाम पर जहां कहीं हरियाणवी है जिसको हम, जहां तक हमारी सोशल मीडिया की पहुंच होगी वहां देखे जाते हैं, लेकिन रेडियो पर, रेडियो सेट पर, ध्वनि तरंगों पर हम अंबाला के रेडियो वितस्ता जिसके प्रतिनिधि के नाते हमारे सामने भारत सोपोरी जी मुस्कुरा रहे हैं, सवाल उछाल रहे हैं, वो अंबाला में है, अंबाला जिला हम छूते हैं इनके माध्यम से, कुरुक्षेत्र जिला हम पेहोवा के एफएम भारती के माध्यम से छूते हैं, और इसके अलावा सुदूर दक्षिण में जाएं तो हम अभी हमारे पास हमारे साथी अक्सर होते हैं अरावली रेडियो से मनीष जी और उनकी टीम, और दादरी वाले तो दमदार तरीके से हर दिन हमारे साथ रहते ही हैं, प्रीतम जी को हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी, प्रीतम जी की आवाज भी सुन रहे हैं, और प्रीतम जी के प्रयत्न से ही आज दादरी के जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी जी हमारे सामने हैं। अच्छा धर्मेंद्र जी, ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना हमारा दायित्व भी है। अगर आज मैं धर्मेंद्र चौधरी, जो कि मेरी सरकार के शिक्षा तंत्र के एक जिले के मुखिया हैं, मैंने चौधरी शब्द प्रयोग किया था, वो भी बिल्कुल सटीक शब्द है, आप वैसे भी चौधरी हैं और वैसे भी चौधरी हैं, मैं ये जानना चाहता हूं दादरी के जिला शिक्षा अधिकारी से कि आज हरियाणा के सरकारी स्कूलों और दादरी के सरकारी स्कूलों की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी बड़ी समस्या क्या है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, आपके द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जिस और ध्यान देने की आवश्यकता, ऐसी कुछ चीजें आप बताना चाहेंगे जिनसे जूझ रहे हैं, जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, जिन पर पार पाना हमारा लक्ष्य है। जी चौधरी साहब।
3: सर, इसमें आपके चैनल के माध्यम से ठीक बात रखी आपने कि चुनौतियां भी जरूर बताई जानी चाहिए, तो हमारे पास देखिए चुनौतियां ये हैं कि समय समय पर जो पोस्टें हमारी खाली हो जाती हैं रिटायरमेंट के बाद, और उसमें चाहे क्लास फोर हो, स्वीपर हो, पीएन हो, चौकीदार हो स्कूलों में, और समय समय पर कोई प्रिंसिपल रिटायर हो जाता है टीचर, तो समय समय पर ये जो भर्ती का शेड्यूल है ये हर साल अगर हमें टीचर मिलते रहे तो ये दिक्कत काफी बड़ी है। तो इसमें मैं सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री का ध्यान भी खींचना चाहूंगा कि कोई इस प्रकार की योजना की जाए जिला स्तर पर या स्कूल के प्रिंसिपल स्तर पर कि भाई उसको वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जैसे ही कोई पोस्ट खाली होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर्मचारी रख ले, तो ये कर्मचारियों की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है हमारे, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, फिर दाएं बाएं स्कूल से इंटरनल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि भर्तियों में भी उसमें सरकार भी क्या करे, क्योंकि एचपीएससी के थ्रू या एसएस बोर्ड के थ्रू भर्ती में समय तो लग ही जाता।
1: जी धर्मेंद्र जी ललित उत्तम लिख रहे हैं, ये प्रस्पेक्टिव भी सही है, बहुत बढ़िया उत्तर दिया धर्मेंद्र जी ने, आपके होते हुए सही हाथों में है बच्चों का भविष्य, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, जिसमें आप बच्चों का, उनकी जिंदगी का निर्माण करते हैं, उनकी सोच समझ बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत देश का जो भविष्य है वो हमारे युवा है, जब आप बच्चों के मन में देशभक्ति का जो राग है वो बार बार अलापते हैं और उनको देश के प्रति उनको प्यार होता है और देश के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके लिए ये कमेंट आया, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही शुक्रिया करना चाहिए हमें ललित जी का, और जैसे वीरेंद्र जी ने कहा मैं भी ललित जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो लाइव जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, अभी डॉक्टर साहब ने मंच की बात की, मैं एक मंच कलाकार हूं, हम एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से ही अभिनय में अपनी जिंदगी में एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं, तो आपके सरकारी स्कूलों में अभिनय के लिए या मंच के लिए या रंगमंच के लिए क्या गतिविधियां हो रही है, क्या आपके पास ऐसे टीचर्स हैं जो रंगमंच सिखाते हैं, तो ये बात मेरे मन में आई क्योंकि मैं एक कलाकार हूं, इस वजह से मेरे मन में ये बात आई कि बच्चे भी आज के डेट में बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और क्या उनको आप सरकारी स्कूल में मौका देते हैं।
3: देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि मेरा भी मानना है और हर एक शिक्षाविद का ये मानना है कि खेल के साथ, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेल भी इतना जरूरी है और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना जरूरी है। खेल की बात करें तो हम ये कहेंगे ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, अगर शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ मन है और आगे बच्चा बहुत कुछ कर पाएगा अगर फिजिकली फिट है। उसके बाद आपने बात रखी कि भाई आप अभिनय के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुख्य तौर पे ये है कि बच्चा अपनी अभिव्यक्ति कर सके, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ अभी अगस्त से ही कल्चरल कैलेंडर स्टार्ट होता है, उसमें हर विद्यालय में उसमें चाहे देखिए सारी कल्चरल आइटम उसमें इंक्लूड हैं, सोलो डांस, टीम ग्रुप डांस, उसके बाद सोलो एक्टिंग और किट रागनी और पूरा ग्रुप सॉन्ग, नाटक, ड्रामा, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। हर हर विद्यालय में इनका कंपटीशन होगा, उसके बाद बच्चे ब्लॉक लेवल पे इनमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, ब्लॉक से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आएंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बड़े लेवल पे पूरा बजट आता है और बड़े लेवल पे कल्चरल प्रोग्राम होता है। उसमें हमारे पास म्यूजिक के टीचर भी हैं और डांस के भी टीचर हैं। और आपकी जानकारी के लिए पीछे मैं बता दूं कि जैसे बार बार प्राइवेट स्कूल ये ललित भाई बता रहे हैं, मैं पीछे जिला यमुनानगर में रहा था, तो मैं आपको ये बता दूं कि भोपाल में नेशनल लेवल का कल्चरल फेस्टिवल हुआ था और उसमें हमारे सरकारी स्कूल के बच्चियों ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी और बहुत बड़ी ट्रॉफी हम वहां जीत के लेके आए थे।
1: बहुत ही
3: तो ये समय समय पर
1: जी बहुत ही अच्छी बात सर। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मैडम भी जुड़ी हैं, अगर उनका भी कोई प्रश्न होगा, और साथ में प्रीतम जी, और हमारे साथ चार लोग जुड़े हैं जो आवाज के माध्यम से जुड़े हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर वो कैमरा पे नहीं है तो वो अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो वो भी बोल सकते हैं इस कैमरा इस कार्यक्रम में अपनी ओर से।
2: मेरा एक सवाल है, ये ट्रायल वर्जन फिर बीच में आ गया। रेडियो ग्रामोदय के स्टूडियो में शुभम या हिमांशु या संगम जो भी हैं उनसे मैं कहूंगा कि एक बार स्टूडियो को छोड़ दें, लीव करें, दोबारा एंटर करें और बिना कैमरा के आप जुड़ें। आप कैमरा आईवी कैम के मार्फत आप जुड़ रहे हैं तो उसके कारण ये ट्रायल वर्जन का राग आ रहा है बीच में और इस राग से हमारा जो रंगमंच है वो कुप्रभावित हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारी बातचीत में या कोई अंग्रेजन बोल रहे हैं, हम तो वैसे भी गणे से अंग्रेजी के पक्ष में नहीं है जी। नीलम जी, आपका फ्रेम आज भी वैसा दुरुस्त नहीं है जैसा हम आपसे चाहते हैं। आपका हेडरूम जो है वो हमेशा कम रहना चाहिए, तब बात बनती है। रेडियो ग्रामोदय हमारे साथ फिर से जुड़ गया है, रेडियो ग्रामोदय के स्टूडियो के माध्यम से हम कोशिश करते हैं श्रोता जुड़े, फोन पर मित्र हमारे साथ आए। जो साथी इस कार्यक्रम को अभी रेडियो के अलग अलग स्टेशन पर सुन रहे हैं, चाहे वो दादरी के हों, अम्बाला के हों, जो भी मित्र इसमें जुड़े हुए हैं, वे कृपा करके हमारा जो स्टूडियो का नंबर है, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, हम आपको सवाल पूछना है, दादरी के जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे कोई सवाल आपको पूछना है, आप उनके साथ सवाल करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। सवाल करने का तरीका है हमारा स्टूडियो का नंबर, और स्टूडियो का नंबर जो है वो है 88-16-904-904, जो कि आज हमसे कर रहा है दुर्व्यवहार। मैं फिर से कह रहा हूं रेडियो ग्रामोदय वालों, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है भाई सुधर जाओ यार, इससे पहले कि मैं मुस्कुराते मुस्कुराते गुस्से में आ जाऊं, मैं भारत जी की तरह छो में आने वाला आदमी हूं। हिमांशु और संगम अगर स्टूडियो में हैं तो बाहर हो जाएं एक बार
1: जी। ये आईवी कैम की वजह से हो रहा है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आईवी कैम से जब जुड़ते हैं तो वो ये मैसेज देता है। तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नीलम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चरखी दादरी श्री धर्मिंदर जी हैं, तो क्या आप इनसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं?
4: सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी को राम राम।
1: राम राम।
4: और क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ दादरी से जुड़े हैं तो बड़ी एक अच्छी पहल जो है, क्योंकि बहुत पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी जी के हाथों में होता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है या हमारे गवर्नमेंट स्कूल है या किसी भी प्रकार का स्कूल है। तो मेरा तो सिर्फ एक ही, हालांकि कोई सवाल जवाब नहीं है जो है जिला शिक्षा अधिकारी जी से, सिर्फ एक ही डिस्कशन है कि क्योंकि एनसीआरबी का डेटा जो है, खासकर हरियाणा के प्रस्पेक्टिव को देखें तो रोजाना दो बच्चियां हमारे यहाँ से गायब हो रही हैं, और बड़ा शॉकिंग डेटा है ये, तो खासकर जो हमारे स्कूलों में जो हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, तो उनकी चाहे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन है या फिर उनकी सुरक्षा है, या बच्चियां कैसे स्कूल में आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, क्योंकि चैलेंजेस हर जगह हैं, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, लेकिन हम उन चैलेंजेस को कम करने की कोशिश में किस प्रकार के अपने सरकारी स्कूल्स में या जो भी हमारा दायरा शिक्षा का जो दायरा पूरे जिले के अंदर किस प्रकार की हम लोग जो है पहल कर रहे हैं, वो मेरा एक विचार साझा करने का उद्देश्य है कि इस चीज पर भी हम लोग जो है जागरूक हों कि हम अपने बच्चों को सुरक्षा कैसे प्रदान करें।
1: जी धर्मेंद्र जी,
3: मैडम का अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छी इन्होंने एक पहल की है कि बच्चियों के बारे में चिंता का सवाल है, लेकिन मैडम जी आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे हर काउंसलर भी हमने नियुक्त किए हुए हैं गर्ल्स स्कूल में, वो समय समय पर लड़कियों से उनकी सब तरह की बातें पूछती हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाइजीन की आपने बात की तो हमारे बहुत से विद्यालयों में समय समय पर सैनिटरी नैपकिन जाते रहते हैं लड़कियों के लिए, और डिस्बर्सिंग मशीन भी लगाई हुई है टॉयलेट्स के बाहर। तो इस प्रकार की सरकारी विद्यालयों में मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि जो हमारे लेडी स्टाफ है तो उनसे सारी बातें बच्चे शेयर करते हैं और हम हर बात का उनका निराकरण करते, समस्या कोई समस्या नहीं आने देते।
4: धर्मेंद्र जी, मैं काफी समय पहले जो करीब 1-1.5 साल के करीब जिला दादरी में एक दौरे पे गई थी पंचायत में, तो वहां पर पंचायत की सरपंच थी महिला सरपंच, अब मुझे उनका नाम और गांव ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में हो सकता है मैं बता भी दूंगी आपको शो के चलते चलते। तो स्कूल के सरकारी स्कूल में जब मैं गई तो वहां पर पंचायत की सरपंच और पंच के साथ बोले कि मैडम आप गए तो हम किसी और कार्यक्रम में थे, लेकिन वो बोले कि मैडम आप स्कूल भी हमारा विजिट कीजिए कृपया। तो जिस टाइम मैं स्कूल के अंदर गई तो टीचर तो मुझे एक कमरे में बैठ के और बीड़ी पीते मिले, मतलब जस्ट मैं आपको चर्चा करी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ।
5: ट्रायल वर्जन,
4: बच्चे जो है आते तो स्कूल से गायब थे और आधे बच्चे क्लासों में कोई इधर बैठे हैं कोई इधर बैठे हैं, और इस तरीके से, और सरपंच महिला सरपंच का वहां पे कहना था कि मैडम हम लोगों ने बार बार प्रिंसिपल से बात की यहाँ पे, लेकिन उस चीज का कोई जो है निराकरण नहीं हो रहा है, और बड़ी एक्टिव महिला सरपंच आगे थी।
3: देखिए मैडम, कहीं अपवाद ऐसे हो सकते हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जब भी इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाती है उनके खिलाफ, क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, तो पहले तो कोई कैमरे नहीं होते थे, अब काफी विद्यालयों में हमारे कैमरे भी लगे हुए हैं, और कोई इस प्रकार की गतिविधि करता है तो उसकी वीडियो भी लोग बढ़ा के भेज देते हैं, तो उन पे कार्रवाई होती है समय समय पर, प्रशासन समय समय पर उनको चार्जशीट या अन्य दंड देता रहता है, लेकिन ऐसे कोई कुछ बहुत एक आध ही कोई ऐसी रहती है, बाकी समय पे काम करते हैं।
4: नहीं, तो बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि अब बात रहते हैं इस चीज के, लेकिन हमें इस चीजों पे सरप्राइज विजिट या इस तरीके की जो है रखनी चाहिए गांव के
5: ट्रायल वर्जन
4: स्कूलर, आप रखते भी होंगे धर्मेंद्र जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक मेरा सुझाव और था आपके साथ, क्योंकि अभी कुछ दिनों से जैसे कि बच्चों के नए एडमिशन हो
5: रहे हैं,
4: खासकर 134A को लेके जिन बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में हो रहे हैं
1: जी।
4: तो उन बच्चों के साथ जो व्यवहार है टीचर का वो एक अलग ही प्रकार का देखने को मिलता है प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि वो फीस तो देते नहीं है बच्चे, और फीस नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है एक सेग्रीगेशन, मतलब एक अलगाववाद की व्यवहार जो उन बच्चों के साथ किया जाता है, तो इसमें भी किसी प्रकार की कभी हमने 134A में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं खासकर प्राइवेट स्कूलों में, तो कभी उनका भी जाके हमने पूछा स्कूलों में कि उन बच्चों को तो कोई समस्याएं नहीं है? मैं ये भी थोड़ा सा आप
3: नहीं, ये भी आपने अच्छी चिंता जाहिर की है, ये भी आपने, तो इसमें अभी 134A की स्कीम अब तो खैर सरकार ने बंद कर दी, लेकिन जो बच्चे पहले दाखिल हो गए तो जो स्कूल मान लो 10वीं तक है और मान लो बच्चे ने तीसरी चौथी क्लास में ले लिया तो 10वीं तक वही निःशुल्क पढ़ेगा, तो ये एक केवल मनोदशा का है, क्योंकि हम बार बार अब हरियाणवी की बात करें तो हम इन स्कूल वालों को समझाते हैं कि भाई आपको न तो कोई अलग कमरा बनाना पड़ रहा उन बच्चों के लिए, अगर पूरे विद्यालय में 20 बच्चे हो गए क्योंकि 10% ही है, अगर 200 बच्चे हैं तो 10% लगाएं तो 20 बच्चे ही हुए इस प्रकार, तो हम उनको ये कहते हैं ना आपको कोई अलग टीचर लगाना पड़ रहा, न कोई अलग से उनको फैसिलिटी देनी, उन्हीं बच्चों के साथ वो हरियाणवी में कहावत है ना ये गाड़ी जा रही है तो गाड़ी में छाछ क्या भार है, तो उनको समय समय पर ये मनोदशा कुछ एक की है ऐसी मनोदशा कि भाई ये हमारे लिए बोझ हो गए, तो ऐसी कोई शिकायत आती है तो व्यक्तिगत तौर पे बुला के और उनको समझाते। मैं तो एटलीस्ट मतलब 9 से 5 मेरा दफ्तर पर बहुत पेरेंट्स आते हैं उम्मीद लेके और जिस प्रकार भी कोई उनकी पूरी सुनवाई करके और पूरी मदद करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कुछ चीजें मैं पेरेंट्स को भी बताना चाहूंगा कि भाई स्कूल में जब दाखिला लेने जाता है तो उसको बता दिया जाता है कि हमारी ये मंथली फीस है, ये एडमिशन फीस है, उसके बाद भी आर्थिक स्थिति को न देखते हुए ऐसे स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं, फिर वो फीस चढ़ जाती है 50-50 हज़ार लाख लाख रुपया उधार, तो ये उसमें फिर ये झगड़े होते हैं।
4: नहीं खैर ये जो मामला है ये तो खैर किसी छोटे स्कूल का आया था, ज्यादा बड़ा स्कूल नहीं है, और वो बच्चे बिल्कुल ही उनका मजदूर परिवार जो है, पिता उसके मजदूरी करते हैं।
3: मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि ये देखो ये एक मनोदशा का ही मामला है, उस स्कूल वाले को ये सोचना चाहिए कि भाई शिक्षा तो वैसे भी पुण्य का काम है और जब सरकार ने एक फैसिलिटी दे दी उसके तहत उस बच्चे का दाखिला हुआ है तो उसको अन्य बच्चों की तरह उसी मुख्य धारा में शामिल करके उसी तरह, पहले तो आई थी एक दो शिकायतें कि इनको अलग बैठाया जाता है, वो शिकायतें तो कई साल से अब दूर होगी, लेकिन ये एक मनोदशा की बात है कि भाई उन बच्चों का भी उतना ही हक है और उनको बराबर का दर्जा मिले।
2: मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा नीलम जी, अगर किसी विद्यालय विशेष की कोई स्पेसिफिक शिकायत है, कहीं पर कोई दिक्कत है, तो वो संबंधित जिलाधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी तक आप पहुंचा दें, जिला शिक्षा अधिकारी तक आप नहीं पहुंचा सकती, आपके सामने कोई शिकायत है तो वो हमारे तक पहुंचा दें, हम सुनिश्चित करेंगे कि कहीं किसी विद्यालय में प्रदेश में विद्यार्थियों के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार जैसी स्थिति ना हो, ये चीजें मिलजुल कर ठीक करने की हैं। मैं एक बात ये जानना चाहूंगा आपसे डीओ साहब कि हमारे यहाँ सरकार ने पीएम श्री विद्यालय शुरू किए हैं, तो जो हमारे पीएम श्री विद्यालय हैं और दूसरे जो सामान्य विद्यालय हैं इनमें क्या अंतर है, जन सामान्य उनको पता तो चले कि इसमें अंतर ये है साहब।
3: देखिए इसमें ना कुछ कई सालों से ये किया अभिभावकों के मन में एक प्रश्न था कि भाई हरियाणा बोर्ड में परसेंटेज कम आती है, सीबीएसई में ज्यादा आती है, उसका कारण कोई लिबरल मार्किंग या मार्किंग जो पेपर देने के बाद मार्किंग होती है बच्चों की एग्जामिनर, तो उसमें कोई फर्क रहता है या क्या रहता है, तो ये एक संशय था। तो सरकार ने फैसला लिया कि कुछ जो ब्लॉक लेवल पे जहां कस्बे की संख्या होती है और बच्चों की संख्या काफी ज्यादा होती है तो वहां विद्यालयों को सीबीएसई से जोड़ा जाए और वो पीएम श्री के तहत, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया है, लेकिन मुख्य कारण मैं मानता हूं कि वहां भी हमारे बच्चे सब बराबर हैं, मैं सभी बच्चों को एक समान नजर से देखता हूं, अध्यापक वो भी उतने ही क्वालिफाइड हैं जितने अन्य स्कूलों में, केवल एक ये सीबीएसई का जो पेरेंट्स के दिमाग में भरम था कि भाई चलो आप सीबीएसई चाहते हैं तो हमारे हर विद्यालय को तो सीबीएसई से नहीं जोड़ा जा सकता, हरियाणा बोर्ड से भी, तो वो एक उनको एक सुविधा थी कि भाई चलो कोई पेरेंट्स के मन में ये ना रहे कि भाई मेरा बच्चा सीबीएसई में नहीं पढ़ रहा, तो सीबीएसई से है और उसकी कुछ है फीस भी है, मात्र 500 रुपए पर मंथ फीस है, तो ये फर्क है उसमें।
2: शिक्षा के माध्यम का भी अंतर है क्या हिंदी अंग्रेजी वाला, या पीएम श्री विद्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से शिक्षा मिलती है?
3: देखिए सीबीएसई में बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, वो सारे ऑप्शन विकल्प खुले हैं उसके लिए, बस एक ऑप्शन है कि भाई ये सीबीएसई बोर्ड से है और वो हरियाणा बोर्ड से।
1: डॉक्टर साहब कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं कमेंट्स लेना चाहूंगा, साथ में हमारे पास मनीष यादव राम राम हरियाणा लिखते हैं और विकास बंसल लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सारी एनर्जी और संसाधन लगा के भी सरकारी शिक्षा तंत्र का सुधार नहीं कर सकते, ऐसा मेरा सिर्फ कहना नहीं है मेरा दावा भी है। साथ में संजीव राणा राम राम जी कह रहे हैं और विकास बंसल लिख रहे हैं, स्टूडेंट का कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं होता है, कोई सेफ्टी का आश्वासन नहीं दिया जाता है। तो ये दो प्रश्न मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि वो इस विषय में, इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे कोशिश को, हमारी मेहनत को देख पाते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि इस कार्यक्रम में हर एक बात सुनी जाए, जो शाबाशी की बात है वो भी सुनी जाए, और अगर कोई ऐसा प्रश्न, अगर कोई सोच किसी के मन में है तो उसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए। तो आप जो विकास बंसल जी ने लिखा है, धर्मेंद्र सर आप प्लीज बताए।
3: देखिए बंसल साहब को मैं कहना चाहूंगा सर वही हरियाणवी बात कि हम पिछले 10 दिन की जो हमारी अचीवमेंट है, हम इतने फुली कॉन्फिडेंट है और इतने जोश से भरे हुए हैं, आपके 100 प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर हमने मन में ठान ली और टीम वर्क के रूप में हम काम करेंगे, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी चाह के भी कुछ कोशिश नहीं कर सकते, ये मैंने पिछले मात्र 10-15 दिन की अचीवमेंट ही बताई है आपको, और ये सरकारी विद्यालयों की अचीवमेंट बताई। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और ललिता जी भी सुन रही है, बंसल साहब भी सुन रहे हैं, सिडनी में आपके बैठे श्रोतागण सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं जो आप लोग भी रोजाना देखते हो कि भाई आजकल पेरेंट्स में एक ही होड़ लगी हुई है, IIT और नीट। मतलब सब इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ जोर लग रहा है। अब इन्होंने बताया कि भाई सरकारी स्कूल में, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कोटा में पहले कोचिंग लेने जाते थे बच्चे, खुद बच्चे अकेले जाते थे, पिछले 3-4 साल में वहां उन बच्चों की सुसाइड घटनाएं इतनी बड़ी, चिंतित होके अब वहां, मैं आपको सीन बता दूं कि वहां मम्मी या पापा उनमें से एक जाके बाहर कमरा लेके उसके साथ रहना पड़ रहा है जी। तो ऐसी नौबत क्यों आई? ये परसेंटेज की जो अंधाधुंध दौड़ है ये बहुत गलत है, इसमें सारे समाज का एक ओपिनियन है ये, तो ये हमें बदलना पड़ेगा कि बच्चा जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे उसको फ्रीडम दो, आजादी जो आज के टाइम हमारे पे कोई चीज थोप नहीं सकते, तो बच्चा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, क्यों जबरदस्ती आप थोप रहे हो। और एक बात और बता दूं कि ये सारी फैसिलिटी देते हैं माँ बाप उनको, प्राइवेट जो कोटा में जाके 2-2, 4-4 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए हैं, तो उन स्कूलों में क्यों नहीं कर पाए वो कोचिंग, वहां स्पेशल जाके एक्स्ट्रा कोचिंग भी लेनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी ये इस तरह की घटनाएं हो रही। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिंदगी में इतना संघर्ष करके खड़ा होता है कि वो जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होता, उसमें इतना आत्मबल हो जाता है कि छोटी मोटी चीजें वो सोच भी नहीं सकता इस तरह की बातें। तो ये हमें थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है।
1: तो जो इन्होंने स्कूल में बच्चों की मूवमेंट रजिस्टर की बात की, क्या ऐसा कोई प्रावधान है या ऐसा कुछ जानकारी आपको इसके बारे में है?
3: मूवमेंट रजिस्टर का, देखिए मूवमेंट रजिस्टर की हमें, हमारे तो बच्चे एक बार जब स्कूल में आते हैं सुबह 8 बजे और उसके बाद 2:30 बजे ही छुट्टी होती है, इस दौरान कोई बच्चा हमारा बाहर नहीं जाता, सिर्फ पेरेंट्स से अपना बच्चा साथ एप्लीकेशन लिख के पहले दिन छुट्टी मंजूर करा के जाते हैं। तो हमारे इस प्रकार की अभी तक कोई घटना नहीं हुई। पीछे भी आप देखोगे कि अगर कोई बड़ी घटना इस प्रकार हुई थी 4-5 साल पहले गुड़गांव में या कोई, तो किसी बड़े प्राइवेट विद्यालय में हुई।
1: जी जी जी, प्रीतम जी आप कुछ कहना चाहेंगे, आप आज होस्ट हैं हमारे धर्मेंद्र जी के, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप इनके पास बैठे हैं तो कृपया बताएं।
0: सर मेरा तो धर्मेंद्र जी से एक छोटा सा सवाल था, मेरे चरखी दादरी जिले में कितने PMC स्कूल हैं इनके बारे में बता दीजिए, और बच्चों को एडमिशन लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी?
3: नहीं, इसमें देखिए प्रक्रिया कोई नहीं है, हर बच्चे के लिए यहाँ दाखला ओपन है और कोई ऐसी लिमिट नहीं है सीटों की, हर बच्चे के लिए ये है। हमारे, मैं आपको बता दूं ब्लॉक वाइज, इसमें दादरी ब्लॉक की हम बात करें तो इसमें हमारे पास 8 हैं, बोहा में 5 हैं, बारडा में 6 हैं, तो टोटल हमारे पास ये 19।
1: डॉक्टर वीरेंद्र सर,
2: मेरा सवाल, मैं हरियाणा से बाहर ले जाना चाह रहा हूँ सवाल को। चौधरी साहब जानते होंगे अच्छे से हमारे हमारी जो राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो सरकारी स्कूल हैं वहां कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं, 16 मॉडल जिसमें से एक है, और वहां सेक्टर के साथ उसके नाम से स्कूलों को जाना जाता है, 16 मॉडल, 11 का मॉडल। तो ये जो वहां के चंडीगढ़ के स्कूल हैं, मेरे पास ये जानकारी है कि चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में

0: आता हो, विद्यालय सरकारी है, लेकिन वहां पर दाखिले के लिए मारामारी होती है, कंपटीशन होता है, सीटें भर जाती हैं साहब, और लोग सिफारिशें लगवाते फिरते हैं, कोई भारत सपूरी जी को ढूंढता है, कोई डॉक्टर नीलम को ढूंढता है, जी करवाइयो जी स्कूल में दाखला।
1: ये तो
0: ऐसा कोई विद्यालय आपके ध्यान में आ रहा है? मैं तो धर्मेंद्र जी बताएंगे जरा।
2: नहीं, मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ कुछ भ्रांतियां हमने पाली हुई हैं और फैक्ट से सारे हमें जानकारी नहीं है। मैं पिछले एक सुपर 100 और बुनियाद प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से एक ये प्रोविजन किया हुआ है कि विकल्प फाउंडेशन और मिलके वो IIT और मेडिकल की तैयारियां करवाते हैं। तो आपको ये फैक्ट जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे पिछले 4-5 साल के दौरान 20 से 25 बच्चे IIT में निशुल्क कोचिंग लेके सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए और निशुल्क कोचिंग लेके और अब IIT में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं 20 बच्चे। तो वो भी हमारे सरकारी, वो कोई चंडीगढ़ के नहीं थे या बड़े शहर के नहीं थे, ये मैं दादरी के भी बच्चे इसमें शामिल हैं, हिसार के भी शामिल हैं, यमुनानगर के भी शामिल हैं। तो बच्चे को टैलेंट हर बच्चे में बराबर है, वो हम आकलन नहीं कर पा रहे। पेरेंट्स और टीचर सभी सहयोग करें तो हर बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है, वो कोई बड़ा लेबल स्कूल का नहीं चाहिए बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। ऐसे विद्यालय जैसे आपने पूछा है तो कुछ एक दो विद्यालय हमारे रेवाड़ी जिला में भी है, थोड़ा गुड़गांव भी मैं रहा हूँ कुछ समय भी हो, तो वहाँ एक हमारा मॉडल संस्कृति स्कूल है सुशांत लोक में, उसमें भी बड़ी सिफारिशों से दाखिले होते हैं। आपके पंचकुला में भी सार्थक स्कूल है, वहां भी होड़ रहती है पेरेंट्स की, तो ऐसी बात नहीं है
3: जी।
1: एंट्रेंस भी होते हैं, तो बकायदा एंट्रेंस एडमिशन होते हैं
2: जी, एंट्रेंस से ही एडमिशन होते हैं।
3: धर्मेंद्र जी, अभी हमारे इस कार्यक्रम का समय अब समापन की ओर है, इस समय 56 मिनट हमारे हो गए, 3-4 मिनट है। मैं तो अपनी ओर से और सभी साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, आपने बेबाक सारी बातें बताई। और जब भी हम किसी सक्सेस पथ पर चलते हैं तो उसमें बाधाएं तो जरूर आती है, हम 100 लोगों को अगर साथ लेके चलेंगे तो शायद हम 100 को संतुष्ट नहीं कर पाए, पर मैं इतना समझता हूं कि अगर हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में चिंतित रहेंगे और बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों ने ही इस देश को आगे संभालना है, हम तो केवल एक मार्गदर्शक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगा डॉक्टर वीरेंद्र सर और प्रीतम जी और डॉक्टर नीलम जी भी आपका धन्यवाद करें। डॉक्टर वीरेंद्र सर,
0: अब मैं तो धन्यवाद करने से पहले या एक सवाल और पूछना चाहता हूं भारत जी, अगर आप इजाजत दें।
3: प्लीज सर।
0: जो धर्मेंद्र जी ने बुनियाद कार्यक्रम का जिक्र किया, तो बहुत सारे हमारे श्रोता दर्शक ऐसे होंगे जिसको जिनको ये आभास नहीं होगा, जिनको ये आइडिया नहीं होगा कि ये बुनियाद कार्यक्रम एग्जैक्टली क्या था, क्या है। तो बुनियाद के बारे में आप एक अंतिम टिप्पणी जरूर कर दें, बुनियाद के माध्यम से हमने क्या इम्प्रूव किया, कैसे किया?
2: नहीं, इसमें देखिए, हमें ब्लॉक स्तर पे एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का ही, और उसमें सरकार ने शुरू में 100 सीटें रखी थी, अब 400 सीटें बढ़ा दी हैं। तो जो बच्चे स्टेट लेवल पे उसमें फर्स्ट आते हैं उनका दाखला निःशुल्क वहाँ होता है, और फिर उनको तैयारी की जाती है IIT और मेडिकल की तैयारी की जाती है। तो ये सारे गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं केवल वही बच्चे लिए जाते हैं। ब्लॉक लेवल पे भी कोचिंग के सेंटर खोले हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उन बच्चों की वहाँ कोचिंग होती है, निःशुल्क होती है और कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाता।
0: चलिए, बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। मैं प्रीतम जी का आभार व्यक्त करूंगा, प्रीतम जी ने धर्मेंद्र जी को जोड़ा, और नीलम जी मेरी बारी में ना बोलिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं प्रीतम जी का आभार व्यक्त कर रहा था। प्रीतम जी, आपने आज धर्मेंद्र चौधरी जी को जोड़ा, इसी तरह से अम्बाला से, कुरुक्षेत्र से, नारनौल से और करनाल से अलग अलग दिन कोई ना कोई सरकारी अधिकारी, सरकार के नुमाइंदे, प्रतिनिधि हमारे इस कार्यक्रम में भविष्य में भी जुड़ते रहेंगे। सभी साथी इस दिशा में प्रीतम जी की तरह प्रयास करें, प्रीतम जी का अभिनंदन। और एक बार फिर से धर्मेंद्र जी आपका आभार, आपने समय निकाला, समय समय पर आपको जब लगे कि कोई बात सारे हरियाणा में पहुंचानी है और अभिभावकों को सचेत करना है, विद्यार्थियों को सचेत करना है किसी विषय पर, तो आप हमारे

0: निमंत्रण का इंतजार न करें, आप सीधे प्रीतम जी के माध्यम से हमारे इस राज्यव्यापी मंच का हिस्सा बन सकते हैं। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से
1: आज आज के आज के आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी आपने जैसे कहा कि सब अभिभावक तक सब तक बात पहुंचे, तो दो लाइन कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा सर, अगर आपकी इजाजत हो।
2: जी प्लीज
0: जी
2: सर।
0: जी बिल्कुल।
1: मैं आप सभी श्रोतागण से और सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कोई बहुत बड़ा स्कूल हो, छोटा स्कूल हो, सब बच्चे समान रूप से टैलेंटेड हैं। और उन बच्चों का आप लोगों के माँ बाप को भी और अध्यापक साथियों को भी, उन बच्चों का ये संदेश है कि उनको किसी प्रकार अंडर एस्टिमेट ना करें। हम उन बच्चों का ये मैसेज आप लोगों को कि हम कंकड़ या धूल नहीं, हम इतिहास लिखेंगे भूल नहीं, आपके साथ की आवश्यकता।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ नीलम जी, अब जरा जल्दी से आप कह दीजिए, हम एक मिनट आगे निकल गए।
3: जी सर, वो गांव का ग्राम पंचायत का नाम था धर्मेंद्र जी बिलावल ग्राम पंचायत, तो हो सके तो कभी आप घर से निकलते हुए जो है वहाँ भी एक दौरा जो आप कर लिए, सुदेश कुमारी जी वहाँ सरपंच हैं। और दूसरा एक छोटा सा सवाल था कि मान लो एक बच्चे ने स्कूल में
0: सवाल का स्कोप नहीं है, अब सवाल का स्कोप नहीं है, हमारी गाड़ी पहले ही स्टेशन पार कर गई है, 5:01 हुआ, सवाल अगली बार पूछेंगे। प्रीतम जी आप अंतिम बात कह करके एक वाक्य में, और भारत जी पर्दा आज के राम राम हरियाणा का पर्दा गिरा दीजिए, कल फिर मिलेंगे।
2: जी जी जी प्रीतम जी,
4: मैं तो जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो आके पूरे हरियाणा के बच्चों को प्रेरित किया, और इसी के साथ इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को राम राम।
2: और आज के इस कार्यक्रम का यही समापन करते हैं, और सभी श्रोताओं, सभी पटल पर जितने भी लोग हमारे साथ हैं, सभी को हमारी ओर से राम राम। कल है शुक्रवार और कल मिलेंगे शाम 4 बजे। राम राम हरियाणा,
0: राम राम हरियाणा।
2: हिम्मत में पेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम राम राम हरियाणा, जो लाइव होता है 4 बजे से 5 बजे, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम में कुछ जानकारी मिली होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और इस कार्यक्रम का मान बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव प्रोग्राम में शाम 4 बजे, तब तक सुनते रहिए रेडियो विदस्ता 90.0 MHz पर, आपके जीवन का प्रवाह 0 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन्स को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: कवच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: कच्छ महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: पेशा प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2, कलाम भारती रैना, पेश कर रहे हैं आरजे किरनी।
4: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैनावारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग चले।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

जिंदगी के कुछ पल हैं ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 7056413010 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आधारित है पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर पर। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।
3: आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सुनहरी पल। सभी दोस्तों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज की जिसे सुनते ही दिल में एक सुकून महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी की। उन्होंने अपने सुरीले गानों से हमेशा हमें बहलाया है और आज हम उनके सफर को सुरों के जरिए याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके जीवन के पहले पड़ाव से।

सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका बांग्लादेश तब पूर्वी बंगाल में हुआ था। वह बाद में अपने परिवार के साथ मुंबई चली आई जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही सुमन को संगीत का शौक था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और शंकर राव सुप्रे और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से संगीत का गहन अध्ययन किया। 1954 में सुमन ने अपनी गायन करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी मंगू और पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल था, जिसके बाद उनकी पहचान बनी।

सुमन की आवाज को मधुरता और शुद्धता के लिए जाना जाता है। उनकी आवाज को लता मंगेशकर के सम्मान माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई हिट गाने दिए, जैसे न तुम हमें जानो, दिल एक मंदिर है और तुमसे ही हसी मुलाकात हो गई। इन गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। सुमन को अक्सर लता मंगेशकर के साथ तुलना की जाती थी। उनके गायन का तरीका और आवाज की टोन लता जी के सम्मान थी, जिससे उन्हें दूसरी लता भी कहा गया। सुमन ने एसडी बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। उनके साथ की गई संगीत रचनाएं आज भी सराही जाती है।

सुमन की गायन शैली शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी, लेकिन वे अन्य शैलियों में भी निपुण थी। उनकी गायकी में एक सरलता और सहजता थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सुमन ने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

सुमन कल्याणपुर का विवाह राम कल्याणपुर से हुआ था, जो कि एक व्यवसायी थी। वह अपने पारिवारिक जीवन और संगीत करियर के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रही। सुमन ने लगभग 4 दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी लोकप्रियता 1950 से 1970 के दशक में अपने चरम पर थी, लेकिन वे 1980 के दशक में भी गाती रही।

आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अभी जारी है कार्यक्रम सुनहरे बाल। 1980 के दशक में सुमन कल्याणपुर ने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपनी पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर एक शांत और साधारण जीवन चुना। फिल्मों के अलावा सुमन कल्याणपुर ने रेडियो पर भी कई कार्यक्रमों में भाग लिया और लाइव परफॉर्मेंस दी। वह संगीत कार्यक्रमों में अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहे।

सुमन कल्याणपुर ने अपने समकालीन गायकों के बीच भी सम्मान प्राप्त किया। उनकी सरलता और संगीत के प्रति समर्पण ने उन्हें संगीत जगत में एक आदरणीय स्थान दिलाया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया और मुंबई में एक शांत जीवन बिता रही है। हाल के वर्षों में वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई दी है और ज्यादातर अपने परिवार के साथ समय बिताती है। उनके फैंस उन्हें आज भी उनकी मधुर आवाज और अविस्मरणीय गीतों के लिए याद करते हैं। सुमन कल्याणपुर को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। हालांकि उन्हें कई बार मुख्य धारा में उतनी पहचान नहीं मिली जितनी की हकदार थी, फिर भी संगीत प्रेमियों के दिलों में उनकी खास जगह है।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी के गाने आज भी हमारे दिलों में एक नया रंग भर देते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो कभी पुरानी नहीं होती। उन्होंने अपने सुरों से हमेशा हमें प्रेरित किया, हमें प्यार सिखाया और जिंदगी की हर पल को खूबसूरत बनाया, चाहे वो उनके सोलो गाने हो या ड्यूट्स। उन्होंने हर तरह के गानों में अपनी छाप छोड़ी है। उनका सफर किताबों के पन्ने जैसा है, जिसमें हर पंक्ति एक याद है। आज के प्रोग्राम के माध्यम से हमने उनकी यादों को ताज़ा किया। आप सभी का शुक्रिया जो आपने अपने वक्त दिया और सुमन जी के सुरों का लुत्फ उठाया।

इसके साथ ही आज का ये खास प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए सुर के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरीली यादों के साथ खुश रहिए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आपने सुना पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर के ऊपर आधारित। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star, हम सफर जिंदगी का।
1: ये है रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का। आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम गजल गायक जगजीत सिंह के ऊपर, और पेश करने जा रहे हैं रमेश मरहटा।
2: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह नहीं रहे।

ऐसी हिजर के मौसम कब कब आते हैं, तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं। जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। उनके वालिद मोहतरम सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के एक विभाग पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे। जगजीत का परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां थी बचन कौर। जगजीत के बचपन का नाम जीत था। बाद में ज्योतिषों के कहने पर उनका नाम जगजीत पड़ गया। शुरुआती तालीम गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए आप जालंधर आ गए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सन 1965 में आप मुंबई आ गए और पेइंग गेस्ट के तौर पर मुंबई शहर में ही रहने लगे और यहाँ विविध भारती में जिंगल और विज्ञापन गाकर रोजी रोटी कमाने का जरिया पैदा किया। सन 1976 में पहला हिट एल्बम पेश किया और इन 1967 में एक रिहर्सल के दौरान आपकी मुलाकात चित्रा से हुई और 2 साल के बाद यानी 1969 में आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों साथ मिलकर गाने लगे।

छोटी सी रात वो लंबी उनकी गजल गायकी चिनाब के पानी से उठती हवा की हल्की महक का एहसास कराती है। बेशक जहलम के उस पर गजल गायकी की एक बेशकीमती दुनिया बसती रही है, पर वहां भी इस बात का इल्म रहा है कि दूसरी छोर पर गजल को बहुत करीने से संजीदा जज्बात से सजाया।

गजल ही नहीं, दोहे, कुछ लोकगीत और भजनों में भी जगजीत ने अनोखा समर्पण दिखाया। बेगम अख्तर ने गाया और बखूबी गाया। मेहदी हसन को तो लोगों ने ऊंचे तख्त पर ही बिठा दिया। गुलाम अली हर महफिल की शान हो गए, पर जगजीत को यह दर्जा मिला कि उनकी वजह से गजल लोगों में आम हो गई।

पंजाब की धरती में शायद नदियां भी सुर से बहती हैं। जगजीत ने वहां की खुशबू को पहचाना, शौक मिजाज को समझा, वहां के रंगों को जाना और जगजीत बचपन से ही गाने लगे। आपकी गजल हर दिल को छूती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। शास्त्रीय संगीत की तालीम उन्होंने उस्ताद जमाल खान से ली। जगजीत के पिता एक साज बजाया करते थे और उस साज को दिलरुबा कहते हैं। घर में भले ही संगीत का माहौल नहीं था, पर उनके पिता को संगीत का शौक था। जगजीत के पिता ने ही जगजीत को संगीत की तालीम दिलानी शुरू की। बाद में उनका रुझान इस तरफ हो गया और आप सीखने लगे। जगजीत ने राजस्थान के श्री गंगानगर के पंडित छगनलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया और लगभग 2 साल तक संगीत की तालीम हासिल की।

1990 में एक सड़क हादसे में विवेक उनका बेटा जो 21 साल का था दुनिया से चल बसा। उनकी गोद ली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर दुनिया, जगजीत और चित्रा को अलविदा कहा। जगजीत अक्सर कहा करते थे, संगीत के लिए समर्पण और रियाज की जरूरत होती है। जब तक मैं जिंदा हूं गजल भी जीवित है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

सजाई हैं और इसी खामोशी में वो कहीं दूर चले गए। कहीं कोई आवाज कानों के पास तैर रही है ये कहते हुए। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तुम ये खयाल।

आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं बात वो करें जो आपसे सरोकार रखती हो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे सुहाना सफर। स्टूडियो की घड़ी में समय है पूरे 9 बजे। जाने से पहले आपके साथ एक खास विषय पर बात करेंगे और साथ में देंगे कल के कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आज के सुहाने सफर को अब यहीं विराम देने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले चलिए बात करते हैं उस अनमोल खजाने की जो हमारे पास है लेकिन अक्सर हम उसे नजरअंदाज करते हैं, और वो है हमारा स्वास्थ्य, सेहत, हमारी और हमारा असली धन। दोस्तों, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। हमारी सेहत सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पैसा तो कमा लेते हैं पर सेहत कहीं पीछे छूट जाती है। याद रखिए, अगर शरीर साथ ना दे तो दुनिया की हर नियामत फीकी है। स्वास्थ्य लाभ और व्यायाम का महत्व। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है व्यायाम। व्यायाम हमारे शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाता है, तनाव कम करता है और हमें ऊर्जा से भर देता है। अगर आप व्यायाम में केवल एक ही क्रिया करें जिसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 चरणों का संपूर्ण योग है। व्यायाम की बात हो और सूर्य नमस्कार का जिक्र ना हो यह मुमकिन नहीं। इससे सर्वज्ञ व्यायाम कहा जाता है क्योंकि इसके 12 चरण हमारे शरीर के हर हिस्से पर काम करते हैं। आपको बताते हैं इन 12 आसनों के नाम और ये क्या क्या काम करते हैं। पहला है प्राणायामासन, एकाग्रता बढ़ाता है। दूसरा हस्त उत्तनासन, फेफड़ों को खोलता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। पद हस्तासन, पाचन में सुधार करता है और कमर को लचीला बनाता है। अश्व संचालन आसन, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती देता है। पर्वत आसन, बाहों और कंधों को ताकत देता है। अष्टांग नमस्कार, शरीर के 8 अंगों को जमीन से स्पर्श कर अनुशासन सिखाता है। भुजंग आसन, हृदय के लिए लाभकारी और पीठ दर्द में राहत देता है। पर्वता आसन, शरीर में रक्त प्रवाह सुधारता है। अश्व संचालन आसन संतुलित बनाता है, यानी दूसरी

टांग से, जब एक टांग से करते हैं उसके बाद दूसरी टांग का एक क्रम आता है, उसको अश्व संचालन आसन कहते हैं। पदहस्ता आसन फुर्ती लाता है। हस्त उत्तानसन आसन पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है। प्राणायाम आसन शांति और आभार के साथ समापन करता है। आप ने अगर योग किया है और उसमें आपने सूर्य नमस्कार नहीं किया है, आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो हमें अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोग हमें सिखाते हैं कि हमें सूर्य नमस्कार कैसा करना चाहिए। आप अभी अपने मोबाइल पर जाइए और उसमें सर्च करिए कि सूर्य नमस्कार सुबह कैसे किया जाता है। आप देखिए वीडियोज़ की एक भरमार आपको मिलेगी, आप अंडरस्टैंड करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत एकदम सही है तो आप अगर दिन में रोजाना ये सिर्फ 10 और 15 मिनट का सूर्य नमस्कार करें तो आपको नई ताजगी से भर सकता है। सपना यही है कि आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, ये हमेशा हम सबका सपना होता है। सेहत अच्छी है तो दुनिया अच्छी है। श्रोताओं अब समय हो चला है विदा लेने का। आशा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे। कल फिर मिलेंगे इसी स्टेशन पर नई बातों और नई यादों के साथ। आप सभी श्रोताओं जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप अगर कल से सूर्य नमस्कार का योग आसन करते हैं, आप हमें अपना नाम बताइए और हम आपका नाम प्रसारित करेंगे रेडियो वेदस्ता एफएम 90.0 पर, और साथ में आपको आमंत्रण देंगे स्टूडियो में आने का और आपसे बातचीत करेंगे, जिसको प्रसारित करेंगे हम इस सामुदायिक रेडियो के एफएम स्टेशन से। जाते जाते रेडियो वेदस्ता के नाम ये चंद पंक्तियां और आप सभी के नाम। लहरों की रवानी है यादों का ये दस्ता है, लहरों की रवानी है यादों का ये दस्ता है, दिलों को जो जोड़ दे वही रेडियो वितस्ता है, दिलों को जो जोड़ दे वही रेडियो वितस्ता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें अपना पसंदीदा स्टेशन एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता। तो यह था आज का विषय और आज की पंक्तियां। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देते हैं। कल 15 मई 2026 शुक्रवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत सुनेंगे आप और साथ में शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर सुनहरे पल एपिसोड 3 और 8:30 रंगमंच की ओर का एपिसोड 1 पेश करेंगे मानव मेहरा। ये कार्यक्रम मंच के और रंगमंच के कलाकारों के लिए है। 9:30 फिल्मी किस्से एपिसोड 1 आन मिलो सजना फिल्म के बारे में हम बात करेंगे, पेश करेंगे दीपक कश्यप। 10:05 पर होगा कार्यक्रम पहला प्यार एपिसोड 1, पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी। कल शुक्रवार है, कल दिन के 2 बजे आपको इंतजार रहता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, और हमने आपके लिए कल की आपकी फरमाइश कार्यक्रम तैयार किया है। कल जरूर सुनिएगा 2 बजे और अपना फीडबैक भी भेजिएगा हमें। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, 7 बजे रेट्रो हिट्स एपिसोड 13 शीर्षक होगा जिद, पेश करेंगे आरजे किरनी, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मरहटा। कल की कड़ी है तुम्हारी पनाहू में। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। उम्मीद करूंगा कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, घर परिवार का ध्यान रखेंगे और बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करेंगे, और सुनते रहेंगे हमें हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। तो मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।